चाकर लगे चाकरी नाले घर बाद गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनों लगा तस मिले।

0: तो सिंह शिर दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण कर रहे थे। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस 3 की पंजाबी सेवा च हुण असीं तुहाडी नज़र कर रहे हैं सुफियाना कलाम।
1: समाज समाओ सुफियाना रंग।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तें खास समय तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुधी सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स कुछ नतरा है सर में तमा हमेशा भगत कोराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम बुधना तें खा पोए तबसरो पेश कंदा पोए कुछ फिल्म की त न्यूज हेडलाइंस प्रोग्राम जे आखिर में नशर कई वेंदियूं इते प्रोग्राम जी तफ़सील तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा ये रहो त भगत कोराम साहब के बुधऊं

प्रभावित कर आप साहब जनजी सदाबहार आवाज में कलाम दे रहे आकाशवाणी जी सिंधी सर साई पेश है तबसरो जून 2026 ते जगत के डायबिटीज कन्वेंशन सेंटर में उत्तर अमेरिका की एक खास खान की आजमाइश कई हुई तेमें भारत के बदमियाद हिस्सेदारी रही समर फैंसी फूड 2026 में भारतीय पैवलियन बदमत मुतासर कर रहे हो गड़ियल मुहूर्त न्यूयॉर्क में भारत के काउंसल जनरल श्री बनाया श्रीकांता प्रधान आर्मी तौर ते मशहूर शेफ लेखक ए टाइम 100 के इनाम याफ्ता शेफ विकास खन्ना कयो पैवलियन में घणे समय भारतीय खाधे जा चाहिदा रवानगी कंदड़ ए इनोवेटर्स एक छत हेठा अची कठा थिया भारतीय पैवलियन में गडियल तौर ते जरई ए सुधियल खाधे के रवानगी कंदड़ अथॉरिटी एपीडीए इन सां गॾोगॾु भारतीय व्यापार प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आईटीपीओ गॾिजी करे कयो सहयोग कार्रवाई कई वई तजारत खाते भारतीय सरकार तहत तंहिंमें वधंदड़ भारतीय खाधे जे तलब खे ॾेखारे वियो गॾोगॾु भारतीय खाधे जे ऐं भारतीय ज़री खाधनि जे डाइवर्सिटी क्वालिटी ऐं रिचनेस खे पिण ॾेखारे वियो ख़ासि करे तंहिंमें ख़रीदार रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे आलम भर मां अची शरीक थिया हुआ समर फैंसी फूड में भारत जो वॾे में वॾो हिसो रहियो तंहिंमें घणियूं कैटेगरीज़ शुमार हुयूं हुन में अची थो वञे बासमती चांवर मसाला तयारु खाधा पीअण जा पदार्थ ऑर्गेनिक शयूं जंहिंमें खाधा फ्रोज़न फूड्स हिन खां अलावा नाश्ते जूं शयूं ऐं वैल्यू एडेड ज़री शयूं पिण हुयूं तंहिं सां मुल्क जी बीहक अरब जे वॾे में वॾे खाध खुराक जी रवानगी कंदड़ तौर पुख़्ती थी आहे ऐं पैवलियन जी मुख्य कशिश कंदड़ ॻाल्हि हुई भारतीय अंब जंहिंमें 6 अहम रवानगी जूं क्वालिटियूं ॾेखारी वयूं हुयूं हिन में भारत जे अनेक अंबनि जी वैराइटीज़ खे ॾेखारियो वियो गोवा में आयल माण्हुनि बासमती चांवरनि जे वैराइटीज़ खे पिण ॾिठो जंहिंमें घणियूं डिशेस तयार कई वयूं हुयूं पवेलियन जी ॿी हिकु हाईलाइट हुई ख़ुशबू टेक्सचर ऐं क्वालिटी जंहिं भारतीय चांवरनि खे आलमी मार्केट में मशहूर ॾियारी आहे ऑथेंटिक भारतीय खाधनि जी तलब आलम भर में वधी रही आहे भारतीय पवेलियन में सोशन ऐं फैक्ट्रीज़ सां वेंदड़ खाधनि जी

चंगी तलब ॾिसण में अची रही। समर फैंसी फुट 2026 में पहिरें भेरो भारतीय पवेलियन ते ख़ुशी ज़ाहिर कंदे आईटीपीओ जे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नीरज खरवाल पिण चयो त आईटीपीओ ऐं एपीडीए जे मंझि जेको हितावन आहे सो भारतीय खाधे जी रवानगी कंदड़नि खे फ़ाइदो मुयसरु कराईंदो। मीडिया खे ख़िताब कंदे न्यूयॉर्क में भारत जे काउंसिल जनरल श्री विनय श्रीकांता प्रधान पवेलियन खे हिकु लैंडमार्क करे कोठियो जंहिं सां भारतीय खाधे जी रवानगी ऐं संदनि ब्रांड जी हाज़िरी अमरीका में वधीक पुख़्ती थींदी। हुन चयो समर फैंसी फूड में भारतीय पवेलियन भारतीय ब्रांड्स खे अमरीकी मार्केट में सुञाणप थो ॾियारे, गॾो गॾु अक़ीदो कौत ऐं भारतीय खाधे जी क्वालिटी खे पधरो थो करे। हुन वधीक चयो त शेफ विकास खन्ना जी हाज़िरी हिन मौक़े ते ख़ासि करे मुहूर्त जे मौक़े ते जेको की भारत जो वॾे में वॾो खाद खुराक जो एम्बेसडर आहे सो लॻभॻि टिनि ॾहाकनि खां तंहिं सां भारत जी सकाफ़त रवायत ऐं क़दरनि जो मगरबी दुनिया में घणो क़दुरु थींदो ख़ासि करे खाधे जी ॿोलीअ में। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशेंट फिल्म नगमा आगाज़ करें झूलेलाल उस्तसी सां।

फिल्म गीत बद्री आकाशवाणी जी सिंधी सरजा 9870 किलोवाट से पेश हैं खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ईरान के सदर मासूद पेस्किस्तान से टेलीफोन से गाल बोल कई इलाके में दायमा अमन के लिए कोशिशों के जारी रखने के जोर दिनों। जापान के प्रधानमंत्री सेमी टाकाची अज भारत के ट्रेनियन की यात्रा से न्यू दिल्ली में पहुंचंदी। अफगानिस्तान पाकिस्तान से संदस इलाके सालमित की भूमिकरी जो इल्जाम मिलो है अहमद जमायत ए आर्मी बिरादरी के हालतों से वेझी निगाह रखने की अपील कई है। ब्रिटेन में मटजंदड़ ललकार के मद्देनजर 298 बिलियन पाउंड्स की बचा इन्वेस्टमेंट प्लान के पदरों किया है। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस स्वीडन के टे बुड़ी न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अज सुबह जो मात डी।

मैं शांतान सिंह दी सरसुदरा ये असन जे प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी जावे मेरे तो असन कर जानी थी दी सुबह जो भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 ते सदा नींदा इजाजत सदा इंकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 23 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल

संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही यही समाचार बुलेटिन समाप्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है श्रोताओं आपकी पसंद यानी कि गुड मॉर्निंग गीतों भरी का। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत की, तो ऐसा मन करता है कि संगीत की दुनिया में खो जाएं, गुनगुनाते रहें और गीत गाते रहें और स्ट्रेस को अपने पास भी ना आने दें। तनाव चिंता दूर से दूर रहे हमसे, इतना अच्छा है। और सुबह सवेरे का संगीत तो और भी खूबसूरत और मीठा लगता है।

दोस्तों, हमारा मतलब संगीत सुनने से है और सुनाने से भी है। कहने का मतलब, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। इंसान की जिंदगी से संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है।

आप सुन रहे हैं सिमरन कौर के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं हकीकत की भीड़ में कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं, आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं।

और कैट संगीत के सभी हो, सभी तरह का संगीत हमें और आपको अच्छा लगता है। क्यों? सही बात कही ना मैंने, क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर को पौष्टिक खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की जरूरत होती है, क्योंकि इससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है और अकेलापन और तनाव दोनों दूर होते हैं।

दोस्तों, संगीत किसी भी समय सुने, हमेशा दिमागी सुकून ही मिलता है और साथ ही ब्रेन फंक्शन भी बेहतर होता है। ऐसे में अगर आप जीवन भर तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो जल्दी ही संगीत से रिश्ता कायम कर लीजिए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सत्यन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया।

0: राष्ट्रपति ने शांति स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452

0: प्रतिनिधि किया और उनसे कहा गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
1: सभी मदरसों को यूडायस यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने जनगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। इसमें टीएम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलूरू में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थितियों और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन के स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
2: अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयास

0: के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रूपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रूपये होगा, जबकि पहले यह महसूल 14 रूपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रूपये से कम करके 7.5 रूपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने राजस्थान सरकार में मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तियार का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत नहीं मेहता का रात मुंबई में उनकी रहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के कैदी में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चिस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 9:10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेर कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक-रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम में आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा मनमीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों, नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबारों के उलमी के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शायद होने वाले उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शायद किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है, जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में एसआईआर का अमल शुरू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में होगा एसआईआर। अखबार की बैन अलावा सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर आजम।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी जनेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज गली जहाजों की बिना रुकावट आमोदरफ्त और तजारत के तहफ़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है।

0: दौर में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पांच T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। स्वर प्रस्तुति है शुभम कुमार की और राग है नट भैरव। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। स्वर प्रस्तुति थी शुभम कुमार की और राग था नट भैरव।

आ गया हूं मैं, क्या लिखूं अपना दर्द।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्रामर्स सुबुगाही के तहत शब्द पेश कर रहे थे भाई दर्शन सिंह निर्मल और साथी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: हम बात करते हैं अब देश दुनिया के इतिहास में 1 जुलाई की तारीख पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन 1867 में कनाडा कॉन्फेडरेशन महासंघ के माध्यम से एक स्वशासी डोमिनियन बना। इस तारीख को कनाडा दिवस को भी मनाया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आज ही के दिन अस्तित्व में आया था। और हम सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक भी है। 23,270 इसकी शाखाएं ब्रांचेस पूरे देश भर में हैं और 63,580 से भी ज्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे देश भर में हैं। और स्टेट बैंक का कारोबार जो है वो 36 देशों में फैला हुआ है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बैंक है ये। और इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण किया गया था आज ही 1955 में और इसे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया नाम दिया गया। और देश के 1/4 बैंकिंग मार्केट पर स्टेट बैंक का कब्जा है। 1997 में आज के दिन हांगकांग को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया जिससे वहां ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले बात वीर अब्दुल हमीद की। आज के दिन 1933 में इनका जन्म

रहा था। भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे। इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्तार में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय के अजेय समझे जाने वाले अमरीका में बने पाकिस्तान के पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन जन्म हुआ था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार

प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी मणि की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेरा। पंडित जी ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, साथ ही साथ संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरी नाम से हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया। और जिन फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया उनमें प्रमुख फिल्मों के अगर हम नाम लें तो चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय। और इन्होंने वायलिन वादक यहूदी मिनोहिन और रॉक बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ भी काम किया। प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत, इनका भी जन्म आज के दिन 1925 में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं अमरकांत। इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, जिंदगी और जोंक जैसी कहानियों से वे खासे चर्चित हुए। इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की पक्षधरता का खूबसूरत चित्रण मिलता है। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन और इन्हीं हथियारों से इनके प्रमुख उपन्यास भी रहे हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए ही इन्हें साल 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी साल इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की जाए और उस्ताद राशिद खान का नाम न लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने संगीतकार और गायक, आज के दिन इनका जन्म हुआ था। राशिद खान को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। उस्ताद राशिद खान ने शुद्ध भारतीय संगीत को हल्की संगीत शैलियों के साथ संयोजित करने का भी बेहतरीन प्रयोग किया। उस्ताद राशिद खान ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अगर हम उनकी आवाज का एक नमूना अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहें तो उस्ताद राशिद खान ने कई हिट गाने दिए और जब भी मैट्रिक फिल्म आई थी उसका एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

जी आकाशवाणी है, अब आप कलीन अहमद से खबरें सुनिए। विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म सानाई ताकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस से स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवां माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताउन रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तियाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निजाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMJI कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रूपये रोजाना की उजरत आर्जी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रूपये थी, जिसे अब VBGRAMJI के तहत 327.40 रूपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकलियती तालीमी अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों की जेर निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजन दास ने कहा है कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीमशुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मेयारात के अन मुताबिक पढ़ाई कर सकें। सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तलाआती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सफरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरु के मुकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रियां अता करेंगी, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकान से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात व वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया।
وزیراعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی

0: मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान के वजीर आजम सानाई ताकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा ताकाइची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफैन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, निज आजादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तहत एहतराम की मुश्तरक अकदार पर मबनी है। मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरहों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रूपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रूपये होगा जबकि ये महसूल 14 रूपये पहले था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन के बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रूपये से कम करके 7.5 रूपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब ये बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरक तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। फिल्म और थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थीं। उनका शुमार मराठी तजुर्बाती थिएटर के कायदीन में होता है। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान मबाप्पे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। खातिम के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। खास खबरें एक बार फिर। विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान के वजीर आजम सनाई ताकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अखबार जर्री का प्रोग्राम शम्मी फरोजा। आज का मौजू है शीरीन जबां।
2: इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्फ इंसान को हैवानात से ममयज करता है वो इंसान का नुत्क यानी उसकी कुव्वत गोयाई है। तमाम मखलूकात में इंसान को ही अपने माफियुज़ ज़मीर के इजहार के लिए जबान का इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल है, लेकिन इंसान को सही मानों में

रहमान। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज के प्रोग्राम में समाअत फरमाइए अस्करण शर्मा से, नजीर अकबर आबादी और इंदु प्रकाश से जिगर मुरादाबादी और मीर तकी मीर का कलाम।

सेठ दयाराम शहर के सबसे ऊंचे आदमी थे। ऊंचे आदमी की क्या पहचान है? उसका खाना ताना ऊंचा हो, उसका लिबास ऊंचा हो, उसका महल ऊंचा हो, उसकी इज्जत ऊंची हो, उसकी नाक ऊंची हो। इसीलिए शायद उन्होंने शहर की सबसे ऊंची जगह तलाश की ताकि वहां ऊंचा महल बनवाया जाए। उस ऊंचे महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची लोहे की सलाखेदार दीवारें बनी हो, दीवार के अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हों, बीच में लोहे का ऊंचा सा दरवाजा हो जिसके आगे ऊंचे से भाले हाथ में लिए लंबे ऊंचे पहरेदार खड़े हों ताकि ऊंची आन पान शान और ऊंची हो। इसी गरज से ऊंची जमीन पर पसे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले छोटे लोगों को नीचे भगा दिया। छोटे लोगों का ऊंची जगह पर रहना वैसे भी कुछ अटपटा सा लगता है, नीचे लोग ऊंची जगह। जमीन पर कब्जा जम जाने के बाद शहर के सबसे ऊंचे आर्किटेक्ट को बुलवाया गया और सेठ जी का सपना सुना दिया गया। ऊंची जगह पर बड़ा ऊंचा महल, चारों तरफ लोहे की सलाखों वाली दीवार, अंदर की तरफ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पेड़ों के साथ जुड़ा चारों तरफ खाली मैदान, मैदानों के साथ जुड़ी रंगीन फूलों की क्यारियां, इन क्यारियों के साथ जुड़े चारों तरफ कमरे, बरामदे और दरवाजे, इन कमरों के बीच चारों तरफ से घिरा तालाब, इस तालाब के अंदर चार ऊंचे ऊंचे फव्वारे और इन फव्वारों के बीच एक बहुत ऊंची मीनार जिसके ठीक ऊपर सेठ जी के पिताजी की मूर्ति सजी हुई। ऐसे लगे जैसे हिमालय के दामन का कोई हिस्सा यहां खींच कर लाया गया हो। और फिर इसके पेड़ों और क्यारियों से घिरे मैदान में सेठ जी की बेटियां अपनी सहेलियों के साथ नाचती गाती भागी फिरें।

0: शेर जी के सपनों की ताबीर झुग्गी झोपड़ियों की तखरीब से शुरू हुई ताकि यहां शानदार महल की तामीर शुरू हो। सिर्फ दयाराम बड़े दयालु थे, उन्होंने यहां इन मेहनत कश मजदूरों की झुग्गी झोपड़ी खरीद ली और उन्हें रहने के लिए नीचे भेज दिया। वहां उन्हें महल के तामीरी के काम में मजदूरी करने का मौका भी दे दिया। एक जलसा बुलाकर उन्होंने उन मजदूरों से कहा,
1: भाइयों, ये मत समझ लेना किसी ने आप लोगों के साथ जुल्म किया है, ऐसा नहीं है। हमने तुम्हारे काम में तरक्की कर दी है, तुम्हारा काम ऊंचा कर दिया है। देखो, पहले तुम अपने काम पर अपने घरों से नीचे जाया करते थे और अब तुम अपने काम पर अपने घरों से ऊपर की तरफ आया करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा काम ऊपर हो गया है।
0: खूब तालियां बजी। गरीब मजदूर रात को भूखे पेट न सोकर अब सिर दयाराम की दया से महल के तामीरी काम में जुटे रहते और अपनी झुग्गियां गिरा दिए जाने पर सेठ जी को कोसने के बजाय दिन भर मजदूरी करके शाम को दो रूखी सूखी खाकर ढोलक छेने हाथ में थाम कर अपने दिन बहलाने का काम शुरू कर देते।

चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजरे वाली।

कपड़ा के सब रस ले लिया।

0: सेठ जी के सपनों का शानदार महल बनकर तैयार हो गया। सेठ जी अपने सपनों की ताबीर इस महल को देखकर फूल नहीं समाते थे। गृह प्रवेश की तारीफ मुकर्रर कर दी गई। सब रिश्तेदारों को, शहर में मान इज्जत रखने वालों को दावतनामे भेज दिए गए। लेकिन ये क्या, महल के बीचों बीच जो मीनार बनवाई गई थी उस पर सेठ जी के पिता की मूर्ति तो रखी ही नहीं गई।
1: ठेकेदार साहब, ये क्या हुआ, खंभे पर पिताजी की मूर्ति तो रखी नहीं गई?
2: सेठ साहब, मूर्ति का मुंह किस तरफ रखा जाना चाहिए था ये तो आपने बताया नहीं, इसलिए मूर्ति रखने की जगह बनाकर उसे छोड़ दिया गया।
1: तो अब कैसे रखी जाएगी मूर्ति?
2: सेठ जी, आप अपना फंक्शन पूरा कर लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, इसके बाद मैं बलियों को बंधवा कर मूर्ति ऊपर रखवा दूंगा।
1: नहीं ठेकेदार साहब, ये काम तो अधूरा काम है, आप इसे आज ही पूरा करवाइए।
2: सेठ जी, बलियां वापस जा चुकी हैं, अब मंगवा कर बांधने में बहुत वक्त लग जाएगा, इतनी बड़ी कोई सीढ़ी भी नहीं मिल सकती और ना ही कोई क्रेन इतनी ऊपर जा सकती है।
1: कुछ भी करो ठेकेदार जी, बलियां वापस मंगवाओ और जितने चाहो आदमी उन्हें बांधने पर लगा दो, मुंह मांगा मेहनताना दो, पर मेरे पिताजी की मूर्ति उस खंभे के ऊपर रखवा दो और मुंह ऊपर शहर की ओर कर दो।
2: सेठ जी, ये काम बहुत लंबा है, जब ये स्तंभ बनाया था तभी ये मूर्ति उस पर रख दी जाती तो काम आसान था, अब ये काम एक दिन में होने वाला नहीं है, यहाँ कोई ट्रेन भी नहीं आ सकती, आप अपना फंक्शन कर लीजिए, मैं बलियां मंगवाकर मूर्ति फिट करवा दूंगा।
1: नहीं नहीं ठेकेदार जी, कुछ भी करो मूर्ति आज ही लगनी चाहिए, सुबह होने से पहले।
0: सेठ जी, हम मलखंभ के खिलाड़ी हैं, खंभे पर हम लंगूर की तरह चढ़ सकते हैं, मूरत को मसाला लगाए के हमारे कंधा पे धर दियो, बजरंग बली की कृपा से हम तुहार मूरत ऊपर धराएंगे।
1: ये तुम क्या कह रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा?
0: हमार ना केशव है सेठ जी, हम तुहार महल में मजूरी किए रहे, हम मलखंभ का उत्तम खिलाड़ी हैं। सेठ जी, खंबा एक बार हमारे शरीर को छू ले तो न हम खंबा को छोड़े और न खंबा हमें छोड़ सकते हैं।
1: हाँ, क्या नाम था तुम्हारा?
0: केशव।
1: हाँ केशव, फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी करो ना।
0: हजूर, अगर गिर के हम मर जाएं तो हमारे गांव में हमारे धर्म पत्नी और अम्मा राहत है, उनका दाल रोटी का प्रबंध कर दियो।
1: अरे तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी से अपना काम शुरू कर दो।
0: सेठ जी, ई मूरत पे मसाला लगाए के हमार कंधा पे धर के बांध दो, हम ऊपर जाके खोल ली है और जैसा कही हो धर दे है, जय बजरंग बली की।
3: ठेकेदार वगैरह ने सेठ जी के पिता की मूर्ति के नीचे पत्थर चिपकाने वाला मसाला लगाया और मूर्ति को केशव के कंधों पर रखकर कपड़े से बांध दिया, इस तरह कि मूर्ति गिरे भी नहीं और केशव ऊपर जाकर उसे आसानी से खोल भी सके। केशव ने एक बार फिर बजरंग बली स्वामी की जय का नारा लगाकर दोनों हाथों और दोनों पैरों का सहारा लेकर लंगूर की तरह फुर्ती से खंभे पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे केशव ऊपर को चढ़ता, नीचे देखने वालों के दिलों की धड़कन बढ़ती जाती, किसी की आंखें केशव से हट नहीं रही थी, लगता था एक केशव के सिवाय उन्हें और कोई नहीं देख रहा, सबकी आंखें जैसी पथरा गई हों। केशव ऊपर ही ऊपर चढ़कर चला जा रहा था, लोग नीचे ही नीचे बैठते चले जा रहे थे, केशव के ऊपर जाने की रफ्तार तेज होती चली जा रही थी, देखने वालों की सांसों की रफ्तार मध्यम होती चली जा रही थी, आखिर एक शोर मचा, पहुंच गया शेर अपनी मंजिल पर। केशव ने खंभे के ऊपर पहुंचकर अपने पांव से खंभे को अच्छी तरह जकड़ लिया, एक हाथ से मूर्ति को थामा, एक हाथ से कपड़े के कांठ को खोला और मूर्ति को खंभे के ऊपर रख दिया। नीचे खड़े लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाई और अचानक केशव अपना तवासुम खो बैठा, हाथ तो पहले ही खंभे से अलग थे, पांव भी अलग हो गए और केशव आम की आम में नीचे आ गिरा। लोग उसकी तरफ भागे, खंभे के नीचे तालाब था, तालाब पानी से भरा था, फिर भी केशव के सिर में भारी चोट आ गई, तालाब का साफ पानी लाल हो गया, लोगों ने उसे उठाया और सेठ जी की मोटर कार उसे अस्पताल ले गई और उसके सिर पर टांके लगाए गए। जब उसे होश आया रहा था, धन्नो धन्नो, ऐसा लगता था उसकी कोई धन्नो से पुकार रही हो।

0: वो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया था। सेठ जी की तरफ से फौरन इंतजाम कर दिया गया। वो खुद भी यही चाहते थे, क्योंकि अगर केशव की मौत हो जाती तो शायद शायद सेठ जी के लिए एक नया झंझट शुरू हो जाता। गांव में जाकर केशव जल्दी सेहतयाब हो गया और थनों पर अपने कारनामों के किस्से दोहराने लगा।
1: अरे तुम हमका का समझतो, का समझतो हमका? हम जो कारनामा किए हैं शहर में जाए के सभी लोगन का हैरान कर दिए हैं हम।
2: हमका जाने तो हर कारनामा, हमका भी शहर ले चलो, कौन अपनी आँखन से देखे तो हर कारनामा तो जाने। नहीं तो हम तो यही समझत कि जैसे पहले बड़हाकत करो कौन अब भी बड़हाकत हो। ओ कौनो गीत तुम गावत हो?
1: ओ गंगा किनारे वाला।
3: ओ कई के फान बनारस वाला, खुल जाए बंद फसल का ताला। ओ कई के

कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया।

किनारे बाला ओ तोरा गंगा किनारे बाला ओ कई के पहन बनाओ रस बाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ कई के

0: गंगा किनारे वाला, बछवाड़ा गंगा किनारे वाला।
1: केशव जब बिल्कुल सिया गायब हो गया तो धनु को लेकर शहर आया और अपना कारनामा दिखाने सीधा सेठ जी के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर दरबान खड़ा था।
2: अरे सेठ जी
3: अरे आवा आवा डरा नहीं, ये सेठ जी नहीं है, सेठ जी अंदर हुई है। आवा तो अंदर आवा, हम तो का दिखाई बे बजरंग बली बाबा की कृपा से हम कितना ऊंचा चढ़ गए रहा। और जैसे ही मूर्ति का इस खंभा पे धरन हमारा पांव लड़खड़ा गया।

0: नहीं आ जा। कोई सिनेमा बायोस्कोप दिखाओ। सेठ जी का महल हर कोई नहीं दे सकता। जा आगे जा।
1: सरकार हमका सेठ जी बहुत अच्छी प्रकार जानत है। हमका मनाही नहीं है। सेठ जी हमका इनाम दे है। हाँ
0: अरे जाता है कि उठाकर बाहर फेंक दूं नीचे। हा? इनाम का बच्चा।
1: अरे सरकार तुम हम पे गुस्सा काहे करत हो। तुमको हम पे विश्वास नहीं हो तो जाओ सेठ जी से जाके पूछ लियो।
0: तो सीधी तरह नहीं जाएगा। तो ये ले अपना इनाम।
2: अरे दैया रे दैया सर फोड़ दिया रे हमारा आदमी का। अभी तो पूरा जख्म भरा भी नहीं था।
1: अरे तू रो नहीं पगली। फिर सेठ जी बाहर आएंगे और हमका हमका मान सम्मान सहित अंदर लेकर जाएंगे और दरबार देखेंगे।
2: हाँ दे दिया है इनाम। घर बना रहे थे तो सारा खून निचोड़ ली। अब घर बन गवा है तो और इनाम दे दिया है तो हर खून बहाकर चलो इब घर चलो। बहुत पा लिया है इनाम। उठो चलो नीचे अपनी झोपड़िया में। इन लोगों का खातिर अपना खून बहाकर कहाँ मिला तो को अपनी खातिर पसीना भी बहाओगे तो भगवान सब कुछ दे ही है। चलो हम तो हर साथ है। हम तो हर हाथ बटाई बे मेहनत मजूरी में। हम सबका बुलाई बे सबका साथ लाई बे और अपना हाथन की मेहनत से अपनी झोपड़ी का महल बनाई बे। चलो लगाओ आवाज अपना सभी साथिन को।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी जिसका उन्वान था इनाम। तहरीर मोहतरमा इंदिरा शर्मा की थी और पेशकश थी प्रेम वोहरा की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया है फिल्मी नगमों के प्रोग्राम का जिसका नाम है मेरी पसंद।
1: हाय, तुम हो हसी वफा, तुमको मेरी जान आते आते आएगी। तुम हो हसी वफा, तुमको मेरी जान आते आते।

0: दुनिया पाते पाते पाएगी। तुम हो हसीन वफा, तुमको मेरी जान आते आते आएगी। शर्म हयात में ये आदत जाते जाते जाएगी। तुम हो हसीन वफा, तुमको।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा अभी हमने आपको सुनवाया, फिल्म थी अपराध। अगली पेशकश आराधना फिल्म से है।

चिराग फिल्म का नगमा अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये नगमा अभी आपने सुना धर्मपुत्र फिल्म से। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है आपके परछाइयां।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए मोहतरमा प्रोमिला ओबेरॉय का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान है ये हमारी जिंदगी। पेशकश मोहतरमा अरुणा कपूर की।

0: ए मैडम, कहाँ खोई हुई आप? अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे तू यार, क्या मरने का इरादा करके घर से निकली है?
1: अरे हाय सुधा, तू और यहाँ?
0: वाह भाई वाह, माँ बदौलत कुल जमा 5.25 फुट लंबे जिस्म समेत आपके सामने मौजूद है। और आप है कि अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा?
1: यकीन हो रहा है भाई, यकीन हो रहा है। हमारी सुधा रानी ही हमारे सामने खड़ी है। मगर आप दिल्ली कब से हैं? इसकी कम से कम खबर तो कर दी होती।
0: अम्मा यार, हम तो दिल्ली में पिछले 5 सालों से हैं।
1: 5 सालों से? तो क्या मेरी चिट्ठी तुम तक नहीं पहुंची?
0: उमा, तेरी हर चिट्ठी रीपोस्ट होकर मेरे पास आती रही है।
1: तो फिर तूने मुझे चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया?
0: अरे अब क्या सब बातें यही कर लेने का इरादा है? चल गाड़ी में बैठ, 5 साल बाद मिले हैं और मिलते ही खड़ा कर दिया कोर्ट में। तेरी ये वकीलों की तरह बहस करने की आदत अभी तक बरकरार है।
1: मगर बेगम साहिबा, बात को गोलमोल करने की आदत आपकी ज्यों की त्यों है।
0: अच्छा ये बता, अरविंद का ट्रांसफर किस ब्रांच में हुआ है?
1: दरियागंज ब्रांच में।
0: अब तो तू बैंक मैनेजर की बीवी हो गई है। फ्लैट भी मिला ही होगा?
1: फ्लैट तो मिल रहा था, मगर हमारा अपना फ्लैट का नंबर आ गया। अब हम अपने फ्लैट में रहते हैं।
0: बहुत खूब।
1: तू किस जगह रह रही है, ये तो तुमने बताया ही नहीं।
0: इतनी उतावली मत हो, बरसों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करनी है तेरे साथ। ले, अब हम चांदनी चौक की भीड़ भाड़ से दूर आ गए।
1: भीड़ भाड़ से तो दूर आ गए हैं, मगर आप इतनी रैश ड्राइविंग क्यों कर रही हैं? क्या मरने का इरादा है?
0: मरने का मजा भी अकेले नहीं आता उमा, अब तू साथ है ना, साथ साथ ही मरेंगे।
1: ना बाबा ना, साथ साथ जी तो सकते हैं, मगर मरने में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। इस नेक काम के लिए तू किसी और को तलाश ले।
0: काश मैं किसी को तलाश सकती।
1: ओहो, अब ये मनहूस सूरत क्यों बना ली है जनाब ने?
0: बनाई नहीं है जनाब, है ही ऐसी।
1: ये बात तो नहीं है।
0: अच्छा ये बता, किधर चलना है? अपने पुराने रेस्टोरेंट चले?
1: अरे तू अपने पुराने ठिकाने को अभी तक भूली नहीं है क्या?
0: कैसे भूला जा सकता है उसे जो जिंदगी से जुड़ जाता है। चल अंदर चल।
1: अरे वो कोने वाली टेबल खाली है, वहीं बैठते हैं।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: क्या हुआ? अरे तेरी वो कमर के नीचे तक बल खाती हुई चोटी का क्या हुआ, जिससे कॉलेज के जमाने में हमारी फ्रेंड्स रश करती थी?
0: सब कुछ हालात के हवाले हो गया उमा, सभी कुछ पीछे छूट गया है, बस अकेली नहीं बच रही हूँ।
1: तेरे ये रंग ढंग, तेरा ये बदला बदला लहजा और उस पर मायूसी भरी ये बातें, ये सब क्या है सुधा? कहाँ कॉलेज के जमाने की सीधी सादी सुधा और कहाँ ये सुधा?
0: सब बताऊंगी तुझे। बरसों से धुएं का गुबार मेरे अंदर घुटन पैदा कर रहा है, मैं अपने आप को भूल ही गई थी। तुझे देखकर आज बहुत कुछ याद आ रहा है। ये भी याद आ रहा है कि मैं एक सीधी साधी घरेलू लड़की सुधा थी, मगर अब खैर। बता क्या लेगी, कोल्ड कॉफी मंगा लूं?
1: हाँ मंगा ले।
0: बेरा बेरा।
2: जी देव साहब।
0: दो कोल्ड कॉफी जरा जल्दी, और देखो एक पैकेट सिगरेट भी।
2: यस देव साहब।
1: सुधा लेकिन ये सिगरेट?
0: नो कमेंट्स प्लीज।
1: कमाल है।
0: और सुना क्या हाल चाल है तेरे?
1: ठीक हूँ।
2: कॉफी हाजिर है देव साहब?
0: लो भाई कॉफी आ गई। उमा खामोश क्यों हो गई, क्या नाराज हो गई?
1: नहीं रे, मगर सोचती हूँ कि तू
0: कुछ मत सोच उमा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, सभी कुछ। उमा सुधा तो परसों पहले मर चुकी है, जो तेरे सामने है वो सुधा नहीं, सुधा की बेजान लाश है।

0: से मैं अपने कंधे पर सलीब की तरह ढो रही हूँ। हालात की चीज ने सुधा को जकड़ कर मार दिया है।
1: ये सब क्या है सुधा?
0: ये एक सच है अम्मा, एक कड़वा सच। मैंने हालात के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस बात के लिए मजबूर हो गई हूँ कि एक नकली मुखौटा लगाकर लोगों के बीच जीऊं। नकली? कैसा नकली मुखौटा? ये जो बाहरी तौर पर तुझे दिख रहा है ना, मेरी अंदर की असलियत से बहुत दूर है। आज सुधा मॉडर्न सोसाइटी की एक जानी मानी हस्ती है। इसके एक इशारे पर हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है।
1: क्या नरेश ने तुझे इस सब के लिए छूट दे रखी है?
0: नरेश? तूने भी किसका नाम लिया है? वो कायर बुजदिल बीवी की कमाई खाने वाला खुदगर्ज।
1: ये तुम क्या कह रही हो सुधा?
0: ठीक कह रही हूँ, मुझे नफरत है उसके नाम से। फिर भी मिसेज नरेश का लेबल मैं अपने माथे पर चिपकाए हुए हूँ, क्योंकि इस लेबल के उतरते ही ये मॉडर्न औरत एक बाजारू औरत बनकर रह जाएगी। औरत को हर कदम पर मर्द के सहारे की जरूरत होती है ना।
1: कॉफी पी, गर्म हो रही है।
0: इस सिगरेट के धुएं में मेरी धुआं सी जिंदगी खुल मिल गई है उमा। आदमी परछाइयों के पीछे दौड़ता है, सिर्फ जरा से सुख की तलाश में कहां कहां भटकता है।
1: तो इतने अरसे के बाद मिली तो दिल खुश हो गया था, पर तेरी उखड़ी उखड़ी बातों से बेचैन हो रही हूँ। तेरी शादी तो अच्छे खासे घराने में हुई थी, फिर हुआ क्या आखिर?
0: तुझे तो मालूम ही है मैं बीए फाइनल में थी। उसी साल पापा ने नरेश के साथ मेरी शादी कर अपने फर्ज से छुटकारा पा लिया।
1: हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने खुद आंटी से कहा था कि आखिर इतनी जल्दी आप सुधा की शादी क्यों कर रही हैं? उनका कहना था इतना अच्छा घर शायद फिर ना मिले।
0: हाँ, उस वक्त नरेश रिसर्च कर रहा था, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, मगर सब कुछ राख हो गया। पांच भाइयों की इकलौती बहन हूँ। भाई शुरू शुरू में प्रोफेसर नहीं कहकर चढ़ाया करते थे, लेकिन जैसे प्रोफेसर बनना था वो तो आज तक नौकरी के लिए जूतियां चटका रहा है।
1: ओह माय गुडनेस, क्या नरेश को अभी तक नौकरी नहीं मिली?
0: वो अभी तक अपनी डिग्रियां लिए घूम रहा है, पर मुझे अब उसे कोई हमदर्दी नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं।
1: वो क्यों? उस वक्त तो उसे बहुत अच्छी नौकरियां ऑफर हुई थी।
0: हाँ, उस वक्त जो कुछ मिल रहा था उससे कुछ अच्छा पाने की उम्मीद में छोड़ता रहा, मगर अब वो वक्त के पीछे छूट गया है और उसके लिए अफसोस भर बाकी रह गया है।
1: मैं समझती हूँ कि तेरी शादी को 7 साल तो हो गए होंगे ना?
0: हाँ, 4 साल में नरेश ने रिसर्च पूरी कर ली थी। वो वक्त तो हंसी खुशी में कट गया, हम दोनों सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाबों में खोए रहे। उसे जिस दिन गोल्ड मेडल मिला था उस दिन वो बहुत खुश था, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिन खिसकते गई और वो गोल्ड मेडल बेमानी और बेकार साबित होता गया।
2: आ गए बरखुरदार इंटरव्यू देकर। ये तुम्हारा 10वां इंटरव्यू है क्या? मेरी गिनती सही है ना?
3: हाँ डैडी, इंटरव्यू तो 10वां ही है, लेकिन
2: इस बार तो तुम्हें नौकरी मिल ही जानी चाहिए।
3: अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ?
2: तुम क्यों कुछ कह सकोगे बरखुरदार? कान खोलकर सुन लो, पूरे 10,000 रूपए तुम्हारी रिसर्च पर और 4,000 रूपए तुम्हारी इंटरव्यू के चक्करों में खर्च हो चुकी हैं।
3: वो सब मैं जानता हूँ डैडी।
2: क्या जानते हो तुम? मैं कहता हूँ क्या जानते हो? अच्छी खासी मास्टरी मिल रही थी, मगर आपको तो पूरी खुदाई का मालिक बनना है ना
3: डैडी। वो मैंने मास्टरी नहीं करनी।
2: तो तुम भी कान खोलकर सुन लो बरखुरदार, अब मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का बोझ नहीं उठा सकती। सुजाता की शादी के लिए फंड का पैसा रखा था, सोचा था बेटा जवान हो गया उसकी नौकरी लग जाएगी, लड़की के बोझ से छुटकारा पाकर अपनी बूढ़ी हड्डियों को आराम दूंगा, मगर अपनी किस्मत में आराम कहा।
3: आपका कहना

0: ठीक है डैडी, मगर मैं भी कोई हाथ पर हाथ रखकर बैठा तो नहीं हूं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो मैं क्या कर सकता हूं? नौकरी लग गई तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा।
1: मगर कब? साल भर हो गया मुझे रिटायर हुए, मगर फिर भी अपनी हड्डियों को प्राइवेट नौकरी में घिस रहा हूं। मैंने क्या तुम लोगों की जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सोचा था बेटा बरगद की घनी छांव है, कुछ तो आराम मिलेगा, मगर तू तो खजूर का पेड़ है, खजूर का।
2: ओफो नरेश के डैडी, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े हो?
1: मैं इसके पीछे पड़ा हूँ? मैं कहता हूँ ऐसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है।
2: हे भगवान, तुम्हारी तो अकल ही मारी गई है, हर वक्त इसे कोसते रहते हो। जा बेटा जा, जा तुम पर जाकर कुछ खा पी लो।
1: हाँ हाँ, खूब करो इसकी खातिर, बड़ी कमाई करके आया है ना। एक छोटी सी नौकरी तो ढूंढ ना सके, प्रोफेसर बनेंगे, क्या जमाना आ गया है।
2: अजी, अब जमाने को तो दोष ना दो।
1: तो और किसको दोष दूं?
2: मैं कहती हूँ ये मनुष्य जो हमारे घर में बैठी हुई है, उसी की वजह से हम सब की कश्ती डूबने को हो रही है।
0: मम्मी, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो?
2: तुम चुप रह नरेश। अरे तुझे क्या पता इन सब बातों का? ओहो, एक रामनाथ की बहू है, दहलीज पर पांव रखते ही घर का नक्शा ही बदल गया। आय हाय, कैसा पक्का हवेली सा मकान खड़ा कर लिया है रामनाथ ने। हाय हाय, हमारे तो भागी फूट गए इसे घर लाकर।
0: मम्मी तुम भी अजीब हो, लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर उसकी तारीफों के पुल बांधा करती थी, मगर अब तुम ही उसे।
2: अरे बेटा, मैं ठहरी भोली भाली, अरे मुझे तो उसकी गोरी चमड़ी ने ठग लिया।
1: नरेश की माँ, क्यों बेकार ही सुधा को कसूरवार ठहराती हो? उसने तो घर भर दिया है, ये तो तुम्हारा नालायक बेटा ही है। जो
2: देखो जी, मेरे बेटे को कुछ मत कहना।
1: क्यों ना कहूं? अरे मैं कहता हूँ, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई छोटा मोटा काम ही पकड़ ले, मगर इस लाड साहब को तो मुफ्त की खानी आती है। समझाते समझाते थक गया हूँ मैं तो, मेरी सुनता ही कौन है?
2: आपने भी भली कही। अजी मैं कहती हूँ, जब से ये इस घर में आई है बुरा ही बुरा हो रहा है। इसके आने के दूसरे ही दिन सुजाता छत से गिर गई और उसके पांव की हड्डी टूट गई, और मेरा 4 तोले का हार चोरी हो गया, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद उतर आया, और फिर तुम रिटायर हो गए। क्या क्या मुसीबत नहीं आई हम।
1: ओफो नरेश की माँ, तुम अपने फोरवन से बाज नहीं आओगी, इस समय बहू का क्या कसूर है? जाओ अब और सर न खाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ।
0: पूछा है कि मुझे आगरा क्यों जाना है?
3: पूछकर क्या होगा, काम से ही जा रहे होगे। मैं आपका ब्रीफ केस तैयार कर दूंगी।
0: सुधा, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मगर।
3: क्यों, क्या बात है? बात करते करते रुक क्यों गए?
0: वो पिछली बार जब मैं इंटरव्यू देकर लौटा था, तुमने पापा की बातें सुनी थी ना?
3: हाँ, और माँ की बातें भी। आपने माँ का नाम नहीं लिया?
0: उनकी तो आदत है सुधा, तो उनकी बातों का ख्याल ना किया करो। बस मेरी नौकरी लग जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, जहाँ तुम और मैं होंगे, और होगा हमारे एक छोटा सा संसार।
3: मगर कब? 5 साल से माँ की जहरीली बातों से दिलो दिमाग जख्मी हो गया है, बात क्या करती है जैसे सलाखें डालती है।
0: माँ आखिर माँ है सुधा, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती।
3: हाँ, तभी तो कहती है कि मैं बदकिस्मत हूँ, उनके खानदान के लिए एक चराग तक न जला सकी। वो ये क्यों नहीं सोचती कि जिस बच्चे की हम परवरिश नहीं कर सकते, उसे दुनिया में क्यों कर लाएं? क्या हम
0: हिम्मत ना हारो सुधा। देखो, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा ना, मैं हालात के साथ अकेला टकरा रहा हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत हार जाओगी तो मुझे कौन संभालेगा है? सुधा, तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो। देखो, मुझे इस तरह मायूसी की गहरी खाई में ना फेंको, मैं तो।
3: आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ, पापा बेचारे भी कहाँ तक। मुझे ये अंगूठी ले जाइए, इस पर इसी से काम चलाइए।
0: थैंक यू सुधा, थैंक यू वेरी मच।
3: फिर इसी तरह दिन गुजरते गए उमा। मेरा एक एक सेवर ड्राफ्टों, पोस्ट ऑर्डरों और इंटरव्यूज के किराए भाड़े की भेंट चढ़ता चला गया।

0: थी, लेकिन नरेश को नौकरी नहीं मिलनी थी सो नहीं मिली। उस पर नरेश फिर खाली हाथ लौटा तो मैंने मायके जाने की ठान ली।
1: तो तुम जा रही हो?
0: हाँ, देख तो रही हो, पापा खुद लेने आए हैं।
1: मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा।
0: कोई ना कोई आकर छोड़ जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो।
1: वो सुना, इस बार बंबई से कॉल आई है।
0: आखिर चूड़ी भी तुम्हें पिछली बार दे दी थी, अब तो कोई जेवर भी नहीं बचा। अब ये लो, ये बालियां हैं, इन्हें भी उतार देती हूँ।
1: और ये मंगलसूत्र?
0: ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मंगलसूत्र मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी, यही तो एक रह गया है बस।
1: ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुधा, सुधा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर जिंदगी फिरान सी हो जाएगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, लगता है जैसे तुम मेरी पहुंच से दूर होती जा रही हो। अब कभी ना लौटोगी तुम?
0: ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो
2: बहू। अरे भाई जल्दी नीचे आओ, गाड़ी का वक्त हो रहा है।
0: आई माँ जी।
1: सुनो,
0: मुझे इस तरह ना देखो, तुम्हारी नजरों से डर लगता है। अपना ख्याल रखना, मुझे हर घड़ी तुम्हारा ही ख्याल रहेगा। नौकरी मिलते ही चिट्ठी लिख देना।
1: तुम भी अपना ख्याल रखना सुधा। वो अगर माँ या पापा जेवरों के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी?
0: उसकी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा चलती हूँ, जल्दी ही लौटूंगी।
1: सुधा।
0: बाद में ससुराल वापस न जा सकी। भाई भाभी जो पहले हाथों हाथ लेते थे, अब मुझसे कतराने लगे। हालात को देखते हुए पापा ने मुझे एक टाइपिंग स्कूल में भर्ती करा दिया। पहले टाइप सीखी, फिर शॉर्ट हैंड भी सीख लिया। कभी नरेश के निकम्मेपन की बात उठती तो मुझे लगता जैसे सब मिलकर मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं। और एक दिन नरेश का खत आया, उस मिन्नतों से भरे खत में मुझे वापस आने को कहा था, मगर उस खत का जवाब पापा ने खुद दिया। पता नहीं पापा ने क्या लिखा कि उसके बाद उसका कोई खत नहीं आया।
3: फिर उसके बाद क्या हुआ?
0: मैंने ट्रेनिंग पूरी कर ली और मुझे दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में स्टेनो की नौकरी मिल गई। 1000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसमें से भी 200 रुपए बचाकर नरेश को भेज देती थी। ताल्लुकात जो पहले 6 महीने से कट गए थे, चेकों और मनी ऑर्डरों के जरिए से फिर से जुड़ गए। मुझे लगा रुपया रिश्तों के दरमियान पुल का काम करता है।
3: उसके बाद तो नरेश मिलने आया होगा तुमसे।
0: मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी उसे, हर महीने मेरा भेजा हुआ पैसा मिल ही रहा था। यहां नरेश अपनों के बीच रहकर आराम की जिंदगी जीता रहा और इधर मैं हालात से जूझती रही।
4: सुधा जी।
0: जी।
4: इतने दिन से आप यहाँ काम कर रही हैं, मैं देखता हूँ एक अजीब सी बेचैनी आपके चेहरे को मायूस किए रहती है, आखिर बात क्या है?
0: कुछ नहीं सर, यूं ही कुछ घरेलू परेशानियां हैं।
4: अरे भाई, आखिर हमें भी तो बताइए क्या बात है।
0: सर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड एक अरसे से बेरोजगार हैं।
4: ओ, तभी मैं सोचता था, भाई आपके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं।
0: जी।
4: हमारी स्टेनो को अपनी खूबसूरती का ख्याल तो रखना चाहिए ना। भाई ये इस नौकरी की डिमांड है।
0: सर इतनी कम तनख्वाह में कैसे नई नई पोशाकें जुटाई जा सकती हैं?
4: ऑल राइट, आप अगर अच्छी तरह काम करें, मेरा मतलब है अपने काम से हमें खुश रखें, तो फिर

0: किसी चीज की कमी नहीं हो सकती।
1: सर मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ।
0: ईमानदारी? अरे सुधा कितनी भोली हो तुम
1: जी।
0: कितना कितना नाजुक है तुम्हारा हाथ। टाइप करते करते तुम्हारी उंगलियां थक जाती होंगी ना।
1: कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ।
0: नहीं नहीं छोड़ो, इधर आओ इधर आओ।
1: मैं कहती हूँ छोड़िए मेरा हाथ, वरना अच्छा नहीं होगा।
0: लगता है तुम्हें नौकरी नहीं करनी है।
1: मैं लानत भेजती हूँ ऐसी नौकरी पर।
0: अरे इतनी सती सावित्री थी तो नौकरी करने क्यों चली आई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं।
1: दूर रहिए, मैं कहती हूँ आगे मत पढ़िए।
0: मैं कहता हूँ
1: आगे मत पढ़िए।
2: और फिर उमा उसके बाद किसी भी फर्म में दो एक महीने से ज्यादा न टिक सकी। नरेश की खत आते रहते, हर खत में वही पुरानी बात होती, वही पुराने रूपों की मांग और कभी न मिलने वाली नौकरी की उम्मीद।
3: ओ गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नरेश इतना खुदगरज भी हो सकता है।
2: खुदगरज ही नहीं, एक बेहद गिरा हुआ इंसान जिसे सिर्फ पैसे से मतलब था, अपनी बीवी से नहीं। उस दिन तो मेरे सब्र का बांध टूट गया उमा, जिस दिन नरेश ने सुजाता की सगाई के लिए मुझसे 2000 रुपयों की मांग की, साथ ही लिख भेजा, सुधा तुमने तो बैंक में काफी रुपया जोड़ लिया होगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर अंगारा रख दिया हो।
3: कैसे कैसे जालिम लोग हैं इस दुनिया में।
2: इस बार मैं जिस दफ्तर में काम कर रही थी वो पहले दफ्तरों से बेहतर था। बस काफी अच्छा आदमी था, उन भेड़ियों से बिल्कुल अलग था। सर चाय दीजिए।
4: आप भी अपना प्याला ले आइए।
2: अच्छा सर।
4: सुधा जी अक्सर देखता हूँ आप काफी गुमसुम रहती हैं।
2: जी कुछ खास बात नहीं है सर।
4: आपके पति क्या करते हैं?
2: जी वो पीएचडी हैं, लेकिन काफी अरसे से बेरोजगार हैं।
4: क्या कोई कोशिश नहीं की नौकरी के लिए?
2: बहुत कोशिश की सर, पर अप्रोच के बिना।
4: तुम ठीक कहती हो सुधा, आदमी अपनी अहमियत को भूलता जा रहा है।
2: जी सर क्या आप अकेले रहते हैं? सुना है आपकी बीवी।
4: हाँ आपने ठीक सुना है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। घर में बेटे बेटियां बहू दामाद सभी हैं, मगर जीवन साथी के बिना सब सुना है। औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इस सच को निर्लक्ष नहीं किया जा सकता।
2: लगता है सर आपके जख्म अभी ताजा हैं।
4: जख्म तो जख्म ही होता है सुधा जी, क्या ताजा क्या पुराना। हर जख्म अपने आप में तकलीफ से होता है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं।
2: मैं किसी बात का बुरा मानना भूल गई हूँ सर।
4: लगता है हम दोनों के हालात में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, मगर तजुर्बे की बना पर कह सकता हूँ कि आपके घरेलू जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई दरार जरूर है। सुधा जी क्यों ना हम अपने गमों को आपस में शेयर कर लें? हम दोनों ही अपने अपने मंजिलों से भटक गए हैं। आप किस सोच में डूब गए?
2: सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
4: मैं तुम्हें ठीक समझ रहा हूँ सुधा, तुम्हें एक सहारे की जरूरत है और वो सहारा मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
2: मैं जब घर से निकली थी तो ये सोचकर निकली थी कि मुझे हालात का सामना कैसे करना है। नरेश की बात मैंने किसी भी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं समझी।
4: इतनी बड़ी दुनिया में सहारे के बिना रह सकोगी?
2: आप क्या किसी के सहारे जी रहे हैं सर?
4: मेरी बात छोड़ो सुधा, मैं तो एक मर्द हूँ, ये दुनिया मर्दों की है।
2: इस बात पर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखती सर। मैं अकेली फ्लैट में रहती हूँ, पड़ोसियों ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं।
4: तुम बहुत मासूम हो सुधा, लोग तुम्हारे सामने थोड़े कहेंगे। तुम तो खुद ही कहती हो कि तुम जहाँ जहाँ भी नौकरी करने गई लोगों ने तुम्हें।
2: हर जगह नहीं सर, सिर्फ दो जगह।

0: छोड़िए, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं अपने लिए जीऊंगी, किसी के जज्बाती ब्लैकमेल का शिकार होकर नहीं, नरेश के भी नहीं।
1: वेरी गुड, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ।
0: आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना सर? मैं आपको एक बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, दोस्त हर रिश्ते से बहुत ऊपर होता है सर।
1: काम डाउन सुधा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, एक तरह से प्यार भी करता हूँ। जिंदगी में जब कभी कोई मुश्किल आए अपने इस दोस्त को याद कर लेना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ सुधा।
0: थैंक यू सर। उसके बाद क्या नरेश मिलने भी नहीं आया?
2: वो उसे मुझसे नहीं सिर्फ पैसों से मतलब था, वो मैं उसे भेज चुकी थी।
3: तो अब अकेली रहती हो?
2: हाँ, साहब ने ऑफिस से लोन दिलवाकर सेकेंड हैंड कार भी दिलवा दी है, ऑफिस फ्लैट का किराया देता है। बस अकेली तन्हा। मजे में कट रही है।
3: मैं नहीं मानती सुधा, कॉलेज के जमाने में तू कितनी रोमांटिक थी, कितनी जिंदा दिल, और आज तू कितनी बदल गई है। वक्त आदमी को क्या से क्या बना देता है।
2: हाँ उमा, और इस वक्त और जिंदगी से मैं खुल कर लड़ रही हूँ, देखना जीत मेरी होगी।
3: हाँ सुधा, जीत तो तेरी ही हुई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उस हारे हुए नरेश के बारे में।
2: मेरे सामने उसका नाम ना ले। अच्छा चल, तुझे अपना फ्लैट दिखाने ले चलूँ, तुम दोनों अब हर संडे मुझसे मिलने आओगे ना?
3: ओ श्योर, चल देखूं तेरी वो छोटी सी दुनिया जहाँ तू तन्हा रहती है।
2: हाँ, जहाँ मैं तन्हा रहती हूँ, बिल्कुल तन्हा। चलो माँ, उड़ा कर ले जाऊं तुझे उस जहाँ में, जहाँ रिश्तों की कोई भीड़ नहीं, जज्बात की कोई जंजीर नहीं, नई रोशनी की मशाल जलाए सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।

मोहम्मद रफी के साथ आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्रोफेसर। अब सुनिए आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें, फिल्म है औलाद।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना फिल्म थी आशिक। अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म है बातों बातों में।

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मुफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आजादी, जमहूरियत और कानून के अमलदारी के कई एहतराम की मुश्तरक आकदार पर मबनी है। भारत जापान बाहमी तालुकात को 2014 में खसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था और जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सिफारती तालुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत और सरमायाकारी, इक्तिसादी, सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और आवाम से आवाम के रबते शामिल हैं। भारत जापान जामे इक्तिसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। अकवामे मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत की तंजीम और मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने शदीद गर्मी और ज़राअत के उन्वान से मुश्तरक तौर पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत और इंतहाई शदीद गर्मी की वजह से गजाई अशिया की पैदावार कम हो रही है, साथ ही ज़रई गजाई अशिया के निजाम में आमदनी भी घट रही है जिस पर 1 अरब 23 करोड़ लोग इंसार करते हैं। रिपोर्ट में यह तंबीह की गई है कि खुश्क साली जैसे दीगर खतरात के साथ साथ शदीद गर्मी से आलमी तमाजत बढ़ने की तनाजुर में जरूरी पैदावार का नुकसान 3 गुना तक बढ़ सकता है। मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन पर आयद महसूल की शरहों में तब्दील की गई है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रूपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रूपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रूपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रूपये से कम करके 7.5 रूपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब ये बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जून के महीने में अदायगी के यूपीआई निजाम के तहत लेनदेन में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23% का इजाफा हुआ और ये 2 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि यूपीआई लेनदेन की मालियत 20% बढ़कर पिछले महीने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कारपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक औसत बुनियाद पर जून के महीने में यूपीआई के तहत रोजाना तकरीबन 75 करोड़ 70 लाख लेनदेन हुए। 8 से ज्यादा मुल्कों में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, इनमें मुत्तहिद अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर फिनटेक के शोबे में भारत की मौजूदगी को तकवीत मिली है। आज पूरे मुल्क में डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद सेहत आमा को बेहतर बनाने और तहफ़्फ़ुज़ में डॉक्टरों की लगन, हमदर्दी और गिरा कद्र खिदमत के सिले में उनकी इज्जत अफजाई करना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बकाया हिस्सों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों, नीस, उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। वेनेजुएला के जिलसिले में हालात
ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1943 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد قریب دوگنا ہو کر 10571 تک پہنچ گئی ہے۔ وینزویلا کی سرکار نے کہا کہ زلزلوں کے بعد کے

0: दो दिन के दौरान 5,380 अफराद को बचाया गया, जबकि पीर के रोज हुक्काम को सिर्फ 4 अफराद ही जिंदा मिले। 25 जून को वेंजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के दो जलजले के एक के बाद एक आए थे, जिससे कई इमारतें ढह गई। फुटबॉल में मेक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पिछले 40 साल में मेक्सिको पहली मरतबा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले को पार कर गया है। अब इतवार के रोज प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको का मुकाबला जमहूरी कांगो या इंग्लैंड से होगा। इधर न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टर ले स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरकमान भारतीय टीम गुज़श्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल में मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने सिर्फ 13 ओवर्स में महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना हासिल कर लिया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान के वज़ीर आज़म सनाई ताकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत और इंतहाई शदीद गर्मी की वजह से ग़िज़ाई अशिया की पैदावार और दुनिया के ज़रिए ग़िज़ाई अशिया के निज़ाम में आमदनी कम हो रही है। फुटबॉल में मेक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस भी स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में आ गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज रात मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेगावेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रूकावट आमद और रफ्त और तजारत के तहफ़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची भारत के 3 रोज दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते हुए दर्जे हरारत और इंतहाई शदीद गर्मी की वजह से गजाई अशिया की पैदावार और दुनिया के जरिए गजाई अशिया के निजाम में आमदनी कम हो रही है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज रात मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

सोच में आपको तो पढ़ना ही नहीं है और हम जानते हैं कि आप सोच में पढ़े भी नहीं हैं, क्योंकि आपके जिस तरीके से जवाब पहुंच रहे हैं आपने झट से इस फिल्म को पहचान लिया जो आज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले खोलते हैं इस फिल्म की कुंडली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाहरुख सुल्तान ने और पर्दे पर नजर आए थे दो बिल्कुल नए चेहरे अयूब खान और संयुक्ता सिंह। कहानी में देशभक्ति का जज्बा, पुलिस फोर्स का एक्शन और एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसने उस दौर के युवाओं के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन जानते हैं आप कि जो फिल्म का संगीत था वो किसने दिया था? मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने, जबकि गीतों को शब्दों से सजाया था समीर ने, मदन पाल और अन्य गीतकारों ने। बहुत ही दिलचस्प पर्दे के पीछे की कहानी भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें शॉर्ट में इस फिल्म की कहानी क्या थी। फिल्म का नायक विजय एक ईमानदार सैन्य कैडेट है, उसे सभी से प्यार हो जाता है लेकिन सभी की पुरानी और दर्द भरी यादों के कारण वो कुछ रिश्ते उसके खिलाफ भी हो जाते हैं और दूसरी ओर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी है और उसका एक बेटा है। तो ये यहाँ पर कुछ मुश्किलें खड़ी होती हैं लेकिन प्रेम, कर्तव्य और ईमानदारी की इस कहानी में रोमांस के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी देखने को मिलती है। अब फुल डिटेल में अगर आपको कहानी जाननी है तो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको फिल्म सलामी। और उस फिल्म में, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको शायद उस दौर के हम जैसे जो साथी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है और एक नई जोड़ी आई थी, उस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया जिसकी उम्मीद शायद फिल्म के जो निर्देशक है उनको भी नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत ये जोड़ी रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि इस जोड़ी ने आगे किसी और फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन अगर इस फिल्म में उन्होंने काम किया, इतनी खूबसूरत फिल्म रही है, तो इसी जोड़ी पर पिक्चराइज इस फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं।

आप जानते हैं कि इस फिल्म के चॉकलेटी हीरो अयूब खान का बॉलीवुड के द लेजेंड से क्या रिश्ता है? आपको बताते हैं, ये दिलीप कुमार साहब यानी कि यूसुफ खान के सगे भतीजे हैं। इस फिल्म से अयूब रातों रात स्टार बन गए थे। लड़कियों के खत उनके घर खून से लिखे हुए आने लगे थे। फिल्म की खूबसूरत सी एक्ट्रेस संयुक्ता सिंह सलामी जैसी मेगा हिट फिल्म देने के बाद हर किसी को लगा था कि वो बॉलीवुड पर राज करेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बम्पर कामयाबी के बाद भी उन्होंने बहुत जल्द चकाचौंध की इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और अब आपको भी इंतजार होगा इस फिल्म का, उस गीत सुपर डुपर जो गीत है उसका, जिसे कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज ने रातों रात सबके दिलों पर राज करने वाले गीत बना दिया था। जी हाँ, 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में इस गीत को गिना जाता है। फिल्म की रिलीज के समय ये गीत रेडियो, कैसेट्स और संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बन गया था। और ये आपको बता दें कि अयूब खान के करियर की वैसे तो ये फिल्म सबसे चर्चित फिल्म मानी जाती है, और साथ ही साथ इस गीत ने भी उनको एक अलग ही पहचान दिखाई थी। आज जब मल्टीप्लेक्स है, इसका दौर है, तो शायद आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि 90 के दशक में जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, तब अगर कोई फिल्म रिलीज हो और वो एक साथ कमाल कर दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जब ये गीत बजता था, जब सिनेमा हॉल के अंधेरे में कुमार सानू और आशा जी की आवाज में ये गीत लोग सुनते थे, तो अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगते थे। थिएटर्स के मालिक ने बताया था उस टाइम कि हर शो के बाद स्क्रीन के पास से सिक्कों की बोरियां भरी जाती थी, लोग स्क्रीन पर पैसों की बारिश कर देते थे। ये दौर था वो, तो सुनते हैं हम भी इस खूबसूरत से गीत को।

0: देखना,
1: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखना। जी हाँ, फिल्म का संगीत 1994 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में से शामिल था और खासकर इस फिल्म का ये वाला गीत और दूसरा मिले तुमसे बिछड़ के दोनों ने ही अपार लोकप्रियता हासिल की थी। ये फिल्म, जानते हैं इसका शुरुआती नाम क्या था? गुलफाम। जी हाँ, शुरुआत में इस फिल्म का नाम गुलफाम रखने की योजना थी जिसे बाद में बदलकर सलामी कर दिया गया। इस फिल्म ने वो तहलका युवाओं के बीच में मचाया था कि वो इस तरीके की जो जोड़ी थी, लोगों ने, जो युवा जो लोग थे, उन्होंने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया और इतना प्यार दिया कि शायद इतना प्यार उस वक्त जो कि एक नए चेहरे के लिए बहुत कमाल की बात होती थी कि अपने आप को वो साबित करे, जब उसके सामने एक ऐसे ऐसे धुरंधर अभिनेता हैं और वो एक नया चेहरा आकर अपनी एक खास जगह बनाए श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में, वो सब इस जोड़ी ने करके दिखाया था। तो अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

पहुंच गए हैं। पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत जी जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सैयद मसरूर शाइना हसन जी का आया है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्ला, डिंपल, हेमलता जी हैं। पलारी से नितेश जी का एक और संदेश हमारे पास है। ज्योति मक्कर, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, माफ कीजिएगा, ये पिंक

गांव कुचरा से अजीत भापसर, प्रमिला भापसर जी हमारे साथ हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी का एक और संदेश है। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं। शाली मार्ग से अशोक कुमार सहगल जी हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रत्ना ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ, कमल पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराव पंजाब से जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर महराज जी हैं। गांवना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडी नवापाड़ा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा आदिति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश सुरेश राठौड़, गांधीनगर गुजरात से इनका पहुंचा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़ चुके हैं। अगला ये जो है मैसेज वो डीवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें भेजते हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवरंगन जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमित जी हैं। बटनखेड़ा पंजाब से मिची टॉमस, पिंकी लवली आरती हैं। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सुबेदार अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार, बेबी डॉली पूजा, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जी हमारे साथ हैं। नागरकोरा जिला राजन गांव से बबलू जामुन देवी पूजा दुष्यंत जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन श्रीनिवास, सरफराज फरदीन, अतरान और परिवार के सभी सदस्य हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी पर कपिल पूजा परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति ओजस्वी जी हैं। बागपत से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। मयूरी

परिसर भोपाल से श्रवण सिंह विनारे जी हमारे साथ हैं। लिखते हैं कि ये मैंने फिल्म को दो बार देखा था। सुरेश जागव, अनिता सोनर, प्रसाद जी नेहरू चौक पैठन से जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का आया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर रतन माला जी हमारे साथ हैं और सुनीता यादव सुमन जी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रनगर भवतपुर से राधेश्याम देवानगंज चंपा जी हमारे साथ हैं। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है नोहर राजस्थान से नरेंद्र मनोज और हिमांशु सुधार जी का। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम प्रमिला जी हमारे साथ हैं। गांव फरासी से राजकुमार डूडी जी हैं। बीरन गांव से अजीत भापसर जी जुड़े हैं। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम जी का संदेश है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा मोन्टिल्लू नायक जी हमारे साथ हैं। भुईना पारा जिला बालोद से देवनारायण साहू योगिता जी हमारे साथ हैं। रामशरण विश्वकर्मा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हमारे साथ जुड़े और हमारे हम सफर बने।

मेरी कुरासिया कालदी सिंधरवान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा जी का। दोस्तों सलामी शायद बॉक्स ऑफिस पर उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्म ना रही हो, लेकिन इसका संगीत समय की कसौटी पर आज भी खरा उतरता है। 90 के दशक की रोमांटिक धुनों की बात हो और नदीम श्रवण का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आज की फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली मुलाकात में एक नई फिल्म के साथ फिर हाजिर होंगी 3 बजे। आप कहीं मत जाइए, जी हाँ घड़ी में और डायरी में लिख लीजिए 3 बजे आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी और प्रोग्राम होगा मैटिनी मेलोडीज। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक एफएम से आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी।

पल का दावस्थान नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने सुशासन में नवी दिशा दिखी है और देश के समुचे विकास में तेज किया है। इसने नागरिकों को मजबूत भी बनाया है।

खासकर ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

0: परिंदे पूरी तरह समृद्ध हो गए।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम होगा।

0: विकास से जोड़ा जाएगा।
1: हम अपनी सीमा और बढ़ते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।

0: अब ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वजरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासर इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निजाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाख्तियार बनाया है और हमारी तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली डीबीटी के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 वर्षो में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई निजाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को वसअत दी है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है।

0: तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रूपये की रियायत भी दी जाएगी और ये पॉलिसी इस बात को भी लाजमी बनाती है कि अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी। 4 साल में मरहलावार तरीके से नाफिज होने वाले इस अहम तरीकेकार पर 15,000 करोड़ रूपये के माली अखराजात होंगे। अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी की वसूलियां भी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रूपये हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रूपये से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानेब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये 40 साल में आलमी कप में नॉकआउट मरहले में मैक्सिको की पहली जीत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीद कारी पर जोर दिया। मरकजी वजरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of digital India empowered the poor and the underprivileged making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Even Mr. Siddharth Singh Chauhan and Kiran Riju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of Army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored the seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. We have more from a correspondent.
2: India is emerging as a global leader in digital public infrastructure DPI driven by scalable and citizen-centric digital governance platforms. India has signed Memorandum of Understanding with 24 countries for cooperation on India Stack and DPI systems covering digital identity, payments, data exchange and service delivery. UPI now lives in over 8 countries including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Platforms such as Aadhaar, DigiLocker, Kovin, Government e-Marketplace, Diksha, Shiksha, Umang and E-Sanjeevani are increasingly shaping international digital governance models. India also launched India Stack Global and the Global DPI Repository during its G20 presidency in 2023, expanding global access to Indian digital solutions. As Digital India enters its next decade, India is positioning technology as a tool for inclusive growth, digital

0: के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VVGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
4: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है, जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
5: आई एम प्लीज्ड टू नो दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ लॉन्ग टर्म विजन टू बिकम ए फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशन। इट्स कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली टू दोज ऑन क्वालिटी एजुकेशन, रिफ्लेक्ट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्तार के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा।

0: उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: इंडियाज एंगेजमेंट
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूं। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही कलाकार, जिसमें हम आप सभी को रूबरू कराते हैं हर रोज एक अलग शख्सियत से। और आज हमारे इस कार्यक्रम

कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, वो अदब की दुनिया के वो चमकते सितारे हैं जिन्होंने न सिर्फ गजलों को एक नया मिजाज दिया बल्कि फिल्मी गीतों को भी शायरी जैसी पाकीज़गी बख्शी। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी सदियों में पैदा होने वाले अजीम शायर खतील शफ़ई साहब की।

दोस्तों, चकलीत सिंह की आवाज में आपने सुनी है खूबसूरत सी गजल, जिसके शब्द लिखे कतील शफी साहब ने। कतील शफी साहब के लिए हम क्या कहें, उन्हीं की एक लाइन, कुछ लाइन है जो कि बहुत ही मशहूर है, उसको हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा था, तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे तो हालात नहीं है, तुम पूछो और मैं ना बताऊं ऐसे तो हालात नहीं है, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात करें कतील शफी साहब के बारे में। और कतील शफी साहब, जिनका जन्म हुआ 24 दिसंबर सन 1919

को मौजूदा पाकिस्तान के हजारा में, वहां पैदा हुए मोहम्मद औरंगजेब, जिनको आगे चलकर हम सब ने जाना कतील शिफाई के नाम से। कतील उनका तखल्लुस था और शिफाई उन्होंने अपने उस्ताद हकीम मोहम्मद शिफा के सम्मान में अपने नाम के साथ जोड़ा था। बचपन उनका बहुत ही ज्यादा तंगियों में गुजरा, लेकिन उन तंगियों में, उन गरीबी में भी वो जो उनके अंदर का शायर था वो कभी चुप नहीं हुआ, खामोश नहीं हुआ। और उन्होंने उस दौर में लिखना शुरू किया जब उर्दू अदब में बड़े बड़े दिग्गजों का बोलबाला था। लेकिन कतील शाह साहब ने अपनी सादगी और सीधे दिल को छू लेने वाले अल्फाजों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो लीजिए, उनके इसी रूमानी अंदाज को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी गजल चित्रा सिंह की आवाज में।

परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ। इस सादगी में जो दर्द है वही कतील साहब की पहचान है। दोस्तों, कतील शिफाई साहब की खासियत ये थी कि वो सिर्फ मुशायरे के मंच तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। लेकिन उनकी लेखनी का जादू ऐसा था कि वो सरहदों को तो मानता ही नहीं था, और शायद यही वजह थी कि भारत में भी उनकी शायरी को बेहद पसंद किया गया। जब उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि बॉलीवुड के लिए गीत लिखे तो वो भी सीधे लोगों की जुबान पर चढ़ गए और दिल में समा गए। याद कीजिए फिल्म नाराज के गीत। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं 90 के दशक के उस दौर में जहां कतील साहब के लफ्जों ने हर आशिक के दिल को तोया किया।

दोस्तों आप जुड़े हैं कार्यक्रम में एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं इस सफर में कतल शिफाई साहब के बारे में। वैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि कतल साहब सिर्फ हुस्न इश्क या फिर जुदाई के शायर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जिंदगी के कुछ कड़वे सच, गरीबी, समाज के नाइंसाफियों पर भी बहुत कुछ लिखा और वो भी पूरी बेबाकी के साथ लिखा। उन्होंने लिखा अपने साए से भी अश्कों को छुपा कर रोना, अपने साए से भी अश्कों को छुपा कर रोना, जब भी रोना तो चिरागों को बुझाकर रोना। और अगर जब बात हम करें इंसानी रिश्तों और दुनिया के बदलते रंगों की, तो उन्होंने कहा था दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो यही वजह है कि उनकी जो शायरी है वो हर आम और खास इंसान को अपनी कहानी सी लगी। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं कतिल शफी साहब के साथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। कतिल शफी साहब का जो फिल्मी सफर है वो एक किसी मतलब कहें ना कि एक ड्रामे से कम नहीं है, पूरा एक उसमें एक कहानी बन सकती है। बंटवारा जब हुआ तो कतिल साहब जो है वो पाकिस्तान चले गए और वहां की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मजबूत वहां के स्तंभ बने। पहली फिल्म उनकी साल सन 1947 में आई जो कि पाकिस्तान में थी और उसका नाम था तेरी याद, और उसमें उन्होंने बहुत से गीत लिखे। फिल्म तो नहीं चली लेकिन हाँ कतिल साहब की जो कलम थी वो जरूर चल पड़ी। पहली फिल्म आई उनकी 1948 में शहला, जिसमें उन्हें एक गीतकार के रूप में स्थापित किया और पहला नेशनल अवार्ड भी मिला उनको 1956 में, वहां का निगार अवार्ड अनारकली फिल्म के लिए उन्हें मिला ये। लेकिन हम बात करते हैं कि बॉलीवुड में या कहें कि यहाँ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वो किस तरह से आए, तो कतिल साहब जो है उनकी जो शायरी है वो उनकी जो गजलें हैं वो सरहदों के पार यहाँ तक पहुंची। और 70-80 के दशक में जगजीत साहब ने कतिल साहब की बहुत सी गजलों को घर घर में पहुंचाया और उसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे भी उनके लिए पूरी तरह से खुल गए। यानी कि जिस तरह से हमारे कार्यक्रम का आगाज जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में हुआ, उसी तरह से कतिल साहब का जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सफर है वो भी उन्हीं दोनों के जरिए हुआ। और 90 के दशक में निर्देशक महेश भट्ट ने अपनी फिल्म में कतिल साहब को शायरी क्या ये बोला, और फिर तेरी कहानी याद आई, नाराज जैसी जो फिल्में थी वो उन्होंने उसमें उनके गीतों को लिया और वो दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और अगर हम देखें तो उनके पूरे फिल्मी सफर को तो उन्होंने पूरे जीवन में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और तकरीबन 2500 यानी कि 2500 से भी ज्यादा गाने उन्होंने लिखे। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो वो भी उनको बहुत सारे मिले और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। कतिल साहब के जो फिल्मी गाने हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उसमें मुशायरे की पाकिस्तानी और फिल्मों की सादगी को बेहतरीन तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाते थे और उससे वो गीत तैयार करते थे। और भी बहुत सी गजलें हैं जो कि उनकी बहुत ही ज्यादा मशहूर रही है, चाहे वो पंकज उदास की चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल या और भी बहुत सारी गजलें हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत, फिर तेरी कहानी याद आई से।

दोस्तों हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोताओं के संदेश जिन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। बांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशान देवांगन, लखन सावित्री बाई देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुन सिंघल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अभिराज सिंह हमारे साथ जुड़े गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से, राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, सतीश कुमार चंदसौलिया, प्रश सार्थक आलोकित चंदसौलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत से ममता और संजय डिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद यासीन अंजन, साइमा नवाज, हसन आर, बाबू अहद, निफ्रा और बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हैं। दादा बाबू रोड बेबी झारखंड से, गाजिया इब्राहिम, शाइना हसन, सैयद मसरूर हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से, छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा के साथ, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, हदीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौशर, अल्ताफ, नूफर फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोरिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आदि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव की टोली नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम और तबस्सुम तरन्नुम तराना, हिना सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता जुड़े हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा, हनुमान और उत्तम जमदाड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधुनायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जुड़े हैं दतरेंगी भट्टापारा से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिनमेरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया अनिल मोहन जी का पीटीआई संसद मार्ग से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खर से, विनोद खर से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं। शांतिनगर सोनीपत से संजय डिंगिया, नमा नपार हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, और ये जुड़े हैं ज्योति मक्कर, मन्नत भारत और कमल सहानी पिंगावाला चौगोरिया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद बेगम सबीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंगी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, महाराज दरवाजा ईटा, मरहरा दरवाजा ईटा से जुड़े नबी हसन अब्बासी, और अगला संदेश जो है हम तक पहुंचाने वाले हैं ये है, उनका नाम स्वर्ण सिंह है। तो दोस्तों आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने बात की सफल साहब के बारे में। ये कार्यक्रम अब यहीं खत्म करने की आपसे अनुमति चाहूंगी, तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति।

मैंने आपको बता दूं, से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। मम्मी 3:30 हम पेश करेंगे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर करदा ड्रामा ग्रहण। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

रेडियो में 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं और मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राब्ते, तालीम, माली लेनदेन और सरकारी खिदमत तक रसाई के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई निजाम में एक में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमत तक रसाई को वसअत दी है। भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिल तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शिनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खिदमत की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस यूपीआई अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह आधार, डिजी लॉकर को कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। भारत ने 2023 में G20 की सदारत के दौरान इंडिया स्टेक ग्लोबल और ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी भी शुरू की, जिससे भारतीय डिजिटल हल आलमी सतह पर मजीद काबिल रसाई बन गए। अशिया व खिदमत टैक्स जीएसटी की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपए हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपए से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। वजारत खजाना की जानिब से जारी आरजी आदाद शुमार के मुताबिक मजमू घरेलू जीएसटी की वसूलियाबी 1,34,774 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले से 6.5% ज्यादा है। जून के महीने में अदायगी के यूपीआई निजाम के तहत लेन देन में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 23% का इजाफा हुआ और यह 2020

तक पहुंच गया, जबकि यूपीआई लेनदेन की मालियत 20% बढ़कर पिछले महीने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। अदायगियों से मुतालिक भारत की कौमी कारपोरेशन की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक औसत बुनियाद पर जून के महीने में यूपीआई के तहत रोजाना तकरीबन 75 करोड़ 70 लाख लेनदेन हुए। 8 से ज्यादा मुल्कों में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहद अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो। उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मुअसर तौर पर निपटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक वो इस दौरे के दौरान आला सतह की दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी जिनका मकसद भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाना, इकतसादी ताउन को फरोग देना, सरमायाकारी में इजाफा करना, नीस टेक्नोलॉजी व अख्तरा के शोबों में ताउन को बढ़ाना है। निर्मला सीतारमन फ्रांस के अपने हमनसब रोलैंड लेस्क्योर के साथ भारत फ्रांस इकतसादी व माली मुजाकरात ईएफडी की मुश्तरक तौर पर सदारत भी करेंगे। ये मुजाकरात एक्स एन प्रोवेंस में मुनाकिद होंगे। वजारत खजाना ने कहा कि इस इजलास में दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे और भारत फ्रांस इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर गौरखोज करेंगे। दौरे के दौरान मोहतरमा सीतारमन चुनिंदा ग्लोबल सीईओज के साथ बिलमुशाफा मीटिंगें करेंगी और सरकर्दा कारोबारी एग्जीक्यूटिव के साथ गोलमेज बातचीत में शिरकत करेंगी। इन मीटिंगों का मकसद भारत के मजबूत कई इकतसादी बुनियादों, जारी ढांचा जाती असलाहत, सरमायाकारी के मौके और तवील मुद्दती तरक्की के इम्कान को उजागर करना है। पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस की नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहत के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2,500 रूपये देने होंगे। 60 सफहत के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3,500 रूपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6,000 रूपये देने होंगे। 36 सफहत के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर हासिल करने के लिए फीस 5,000 रूपये होगी। 60 सफहत के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर हासिल करने के लिए 6,000 रूपये फीस तय की गई है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने आज दावा किया है कि उसकी अफवाज ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वाके आईएसआईएस के मराकज पर किए गए। इन हमलों से आईएसआईएस और उनके हामियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले इंतहाई दुरुस्त निशाने के साथ किए गए और इन हमलों में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका और कुनार में किए गए फिजाई हमलों के बाद किए गए, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी हलाक और 163 अफराद जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की अपील की है। इन फजाई हमलों पर आलमी सतह पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है।

और सामने लीजिए, सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है आर डी बर्मन ने, फिल्म है 1942 आई लव स्टोरी।

और शाम के ये प्रोग्राम के आखिर में सुनिए कुमार सानू की आवाज में आशिकी फिल्म का नगमा, नगमानिगार समीर, मौसिकार नदीम शर्वन।

उनके साथी आज का फिल्म नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेशे खिदमत है जहां वीरेंद्र पटवारी का तहरीर का दर ड्रामा ग्रहण।

0: वाह जय वाह वाह मेरे प्यारे पतिदेव, आप ग्रेट हो। नहीं ग्रेट नहीं, यू आर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट।
1: ये कसीदा है या तंज?
0: तंज क्यों? बल्कि कसीदा ही नहीं माय डियर हस्बैंड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या फिल्म बनाई है, वाह वाह क्या बात है।
1: फिल्म नहीं,

0: वहीं सही। तुम तो नाराज हो जाते हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ना, मैं आपकी देवी हूँ पद्मा, है ना। अब कोई मुझे भाभी का नाम दे तो अरे तब भी मैं आपकी बीवी हूँ, हो ना। वैसे ही अगर मैंने आपकी डॉक्टर ड्रामा को फिल्म का नाम दे दिया तो खैर छोड़ो ये सब। वैसे आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा चलो अब खाना खा ले, चौथी बार गर्म कर चुकी हूँ।
1: तुम खा लो, मैं एक बार फिर
0: चार बार तो मैं भी देख चुकी हूँ आपकी डॉक्टर ड्रामा फिल्म।
1: कुछ तो है जिसकी वजह से ग्रहण लग चुका है, ग्रहण को हटा दूंगा तब मेरी कोशिश कामयाब हो सकती है, वरना नहीं।
0: तो आप टाइटल बदलना चाहते हैं?
1: टाइटल पर ग्रहण लगा है तो ग्रहण हटाना होगा।
0: जय, फिल्म अच्छी है, मौसम अच्छा है, असलूब अच्छा है और
1: पद्मा, मैंने तुमसे राय नहीं मदद मांग ली है, ठीक है। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं सही, लेकिन
0: अच्छा अच्छा बता तो दो कि मुझे करना क्या है।
1: गीत गोविंदा लिखने वाले जयदेव की बीवी का नाम भी पद्मा था, पद्मावती।
0: मालूम है, और ये भी मालूम है कि वो नाचती थी और जयदेव इंस्पायर होकर लिखता रहता था। चलो चले, अरे आप इस एडिटिंग रूम को छोड़कर मेरे साथ मंदिर चलो, मैं नाचती रहूंगी और अपनी नई फिल्म की फिल्म कारी कर लेना। गीत गाते गाते अरे तुम फिर नाराज हो गए। देव आपकी फिल्म सॉरी डॉक्टर ड्रामा मुकम्मल है, अच्छी है, वेरी मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव। हर फ्रेम हर सेगमेंट उजला है, या कहीं भी अगर तारीख धब्बा नजर आता है तो ग्रहण के बारे में सोचा जा सकता है।
1: ऐसा तुम कह रही हो, तुम जिन लोगों को जयदेव से कुछ तलुकात है और जावियों से मेरी फिल्म देख लेंगे।
0: जयदेव, सच का चेहरा एक दायरे की मानंद होता है और दायरा हर जावे से दायरा ही नजर आता है। सच की तस्वीरें दिखाकर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। लेट्स कंक्लूड प्लीज, कुछ खाते हैं
1: फिर मैं बात, शाम को नाश्ता लंच ब्रंच और डिनर कर लेंगे, ऑल इन वन, ऑल इन वन नोज फरमाएंगे।
0: शाम को रात का पहला पहर भी खत्म होने जा रहा है। तुम्हारे वो कदरदान जो कुत्ते के पिल्ले और इंसान के बच्चे को किसी पांच सितारा होटल से फेंका हुआ झूठा खाना एक साथ खाते हुए दिखाकर जहां अजीम फिल्मकार होने का दावा करते हैं,
1: अपने आप को साबित करते हुए इनामात और एजाजात लेते रहते हैं।
0: हाँ हाँ, उनकी ही बात कर रही हूँ। वही तो है जो पुरसुकून झील की सतह पर कंकर फेंक कर दायरे पैदा कर देते हैं, एक दूसरे का ताकुब करने वाले दायरे, जिनको देखकर आप जैसे माशरे की सही तर्जुमानी करने वाले कलमकारों या फिल्मकारों की सोच की नहज बदल देते हैं। झील सामने होती है मगर संगलाख जमीन से पानी निकालने की बातें करते हैं।
1: तुम कहना क्या चाहती हो?
0: वही जो तुम रिबाउंड करके वापस कर रहे हो। मैं रात को कोई बिना वजह फोन नहीं करता, खासतौर पर अच्छे लोग सनसनीखेज माहौल पैदा करने से गुरेज करते हैं। तुम अपनी फिल्म एक बार क्या 10 बार और देख लो, ग्रहण की खोज करो। मैं ये देख लूंगी कि दिन भर जो फोन की घंटियां बजती रही वो एक ही शख्स की तो नहीं है।
1: तुम अगर एडिटिंग रूम से बाहर गई तो मैं दरवाजा लॉक करके तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा।
0: क्या? शी सुनकर आई एम शॉक्ड नॉट सच।

0: नटराज अंकल नमस्कार, खैरियत तो है ना?
1: अरे हम सब ठीक है बेटी, तुम लोग बाहर गए थे क्या?
0: नहीं तो अंकल। अच्छा ये बताइए आंटी ठीक है ना?
1: अरे पद्मा बेटी सब में वो भी शामिल है। सुनो मैं दोपहर से फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा तो वो आप थे। अरे अंकल आप घर आ जाते तो शायद आपका शागिर्द अपने जावियों के चक्कर से बाहर निकल आता।
1: मैं मुंबई से बोल

0: पद्म देवी, ये ग्रहों का चक्कर ये बचपन से सुनते आए हैं, ये जावियों का चक्कर क्या है?
1: अंकल, जय अपने ऑब्जेक्ट को दूसरों के जावियों से देख देख कर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ से निकल ही नहीं पाता।
0: ठीक है, जय को फोन दो।
1: अंकल, जय अपने एडिटिंग रूम में है, बाहर आता ही नहीं।
0: बहुत ही डिवोशन के साथ काम करता है। भाई जी, मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है क्या?
1: नहीं अंकल, वही पुराना प्रोजेक्ट है।
0: जय ने मुझे इतला दी थी कि वो फिल्म मुकम्मल हो चुकी है, मैं उसी फिल्म के बारे में जय से बात करना चाहता हूँ।
1: क्यों अंकल?
0: अरे, जय अपनी फिल्म को इंडियन पैनोरमा में बतौर एंट्री भेजना चाहता है। क्या फिल्म में कोई प्रॉब्लम है?
1: नहीं नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल सिचुएशन, रियल कैरेक्टर्स, दिखावट के लिए कोई बनावट या सजावट नहीं। लेकिन जयदेव ने हर सेगमेंट इतनी खूबी से फिल्माया अंकल कि लगता है जैसे इलेक्ट्रिक सीन्स हैं।
0: अच्छा, ये बताओ तुमने देखी है क्या?
1: अंकल, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, आज की सुबह से लेकर गई रात तक बार बार वही फिल्म तो देख रहे थे। अंकल, जय इस वक्त भी वही फिल्म देख रहा है।
0: क्यों क्यों?
1: चंद रोज पहले एडिटिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फिल्म अपने एक दोस्त को दिखा दी तो उन्होंने जयदेव की खूब तारीफ की। लेकिन
0: लेकिन क्या बेटी?
1: लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ है मगर जयदेव टच नहीं है।
0: समझ गया समझ गया। भाई, ऐसे लोग अक्सर ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके क्रिएटिव माइंड में इंतजार पैदा करके अपने लिए एक मुकाम पैदा कर देते हैं। वी शुडंट टेक सच कमेंट सीरियसली। देखो, अगले से कह दो कि वो मुझे मुंबई के पते पर फिल्म के सिनॉप्सिस फैक्स कर दे। कल प्रपोजल सबमिट करने की आखिरी तारीख है।
1: अंकल, आप जय को मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि फिल्म में किसी शेड या नोट की कमी है, इसलिए वो सिनॉप्सिस नहीं देगा।
0: हाँ, मैं भी जानता हूँ कि उसकी जिद की पकड़ बहुत मजबूत है, मगर किया क्या जाए बेटी?
1: अंकल, कई बार फिल्म देखकर मुझे सारी फिल्म जबानी याद है, फिल्म से फिल्म तक, मोबाइल में साथी असरात, सब सब कुछ अंकल।
0: बेटी, फिर तुम सिनॉप्सिस देखकर सुबह सवेरे फैक्स कर दो, मैं जब दिल्ली आऊंगा।
1: अंकल आप
0: अरे घबरा गई
1: वो।
0: अरे बेटी, टेंशन मत लो, जय को समझा दूंगा कि पद्मा ने उसके सच को सही डायरेक्शन दी है। और ये तुम ऐसा करो मुझे, अरे फ्रेम बाय फ्रेम का नरेशन दे दो, मैं खुद सिनॉप्सिस लिख दूंगा, एक वीडियो का बन लो।
1: अंकल, जय समझ रहा है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ।
0: अरे मैं भी तुम्हारी आंटी को डिवॉइड ऑफ क्रिएटिविटी, नॉन क्रिएटिव वगैरह वगैरह कहता रहता हूँ। बेटी, सच तो ये है, समझाने वाले से समझने वाला ज्यादा लहीन हो तो बात बन जाती है।
1: अंकल, वो बात तो है। वैसे अंकल, जय ने फिल्म की शुरुआत बतौर रावी की है और इंसानी ख्वाहिशात, दबी ख्वाहिशात, जरूरी आते जिंदगी, हालात की सितम जरीफी, फितरत, खसलत वगैरह वगैरह के बारे में तमहीन बांधकर सहर से गई रात तक का एक कोलाज बनाकर पेश किया है। मुख्तलिफ किरदारों से एक सवाल पूछकर इंडिविजुअल सेगमेंट की शुरुआत की है। और अंकल, पहले सेगमेंट में एक नीम पागल से गुफ्तगू की है। ये नीम पागल नौजवान है, खूब रूह है और वो एक मंदिर के अहाते में भजन गाने या मंत्रों का जाप करने के बजाय भगवान को शेर सुना रहा है। अब जयदेव और इसके किरदार की गुफ्तगू सुनाते हो अंकल। वक्त शहर, डायलॉग टू डायलॉग, फ्रेम टू फ्रेम।
2: मैं ही तो हूँ, मेरा कत्ल हुआ है ना, इसलिए मेरा नाम मकतूल है। बात अपने तक ही रखना भाई, वरना मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा, चले जाओ, मैंने प्रार्थना करनी है, यानी भगवान से बराहे रास्त गुफ्तगू करनी है।
3: आप?
2: हाँ मेरे बाप, मैं नहीं पागल नहीं हूँ, मुकम्मल पागल हुआ। मैं भगवान को मंत्र नहीं सुनाता, शेर सुनाता हूँ।

0: तो मुझे रोके टोके बड़ा सुनता है, बर्दाश्त करता है बर्दाश्त। बात अपने तक ही रखना भाई, किसी को कानों कान खबर ना हो, मैं एक शायर हूँ। अपने तक ये बात भी रख दूंगा कि आप अपने शेर भगवान को सुनाते हैं।
1: मैं जान गए
0: मगर शायर को पहचान गए। मैं एक शायर हूँ भाई,
1: आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
0: बात अपने तक ही रखना भाई,
2: अजी किसी को खबर तक नहीं होने दूंगा।
0: वाह वाह वाह, आप ये सब जानते हैं।
2: बिना शुभ
0: मेरी भगवान से बात हुई थी एक दिन, मगर पहचान गया कि किसको भेजे वो यहाँ हाथ छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, तभी भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजकर अपने भक्त पर एहसान किया है। जैसे जैसे वरना जिंदगी कट रही थी, ऐसे ऐसे एक बेजुर्म सजा हो। जैसे जैसे जैसे आप शायर हो तो अपने शेर क्यों नहीं कहते, मेरा मतलब है कि फरमाते कैसे सुना दूं। अपने तक ये बात रखना भाई,
1: जब मेरा तखल्लुस शफक था तब मैं उफक पर नजर आया करता था। फिर एक शायर ने दौलत का सहारा लेकर छीन ली मेरी शायरी की कुलियात कुलियात कुलियात।
0: ये जानकर सोच हुआ लेकिन आपने तब तक कुछ क्यों किया किया बहुत किया, लेकिन मेरी आवाज दबाई गई। शफक हुआ तो मखतूल बन गया।
2: अरे बाबू,
0: ये दुनिया एक सर्कस है, शो है 3 घंटे का, जालिम जुल्म और मजलूम का। अमीर ताकतवर रिंग मास्टर है जो शेरे बबर को नचाता है।
2: क्या बात है,
0: लेकिन मैं हैवान नहीं हूं ना। उन्होंने एक गरीब शायर की शायरी चुरा ली।
2: चोर कहीं के,
0: मैंने तब से शोहरत याफ्ता सौदा का कलाम अपनाया है।
2: अच्छा किया ना,
0: बहुत अच्छा किया। मगर ये बात अपने तक ही रखना भाई, वरना थोड़ा सब हो जाएगा।
1: गरीबी एक गुनाह है ना बाबू,
2: लेकिन दौलत मिल जाए तो गरीबी की जड़ें भी नाबूद हो जाती हैं। ये सही
1: है। हाँ सही है, सही है,
2: सही है। हाँ। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या
1: करेंगे? 1 करोड़
2: सिर्फ 20,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो,
1: 20,000।
0: क्या करोगे ये रकम लेकर? अपनी खुलियात शाया करके शफक को ग्रहण से आजाद कर दूंगा, मकतूल को नया जन्म दूंगा। हाँ, नया जन्म।
3: अंकल, जयदेव ने इस शॉट को डिजोल्व करके एक संजीदा मौसीकी का फेडिंग किया है और एक अलामती शॉट का इस्तेमाल करके ग्रहण सदा सूरज को दिखाया है।
4: हो बहुत हो। अच्छा पद्म मेरी, अगले सेगमेंट में किसका इंटरव्यू दिखाया है?
3: एक सियासी लीडर का मुख्तसर मगर दिलचस्प इंटरव्यू।
5: गरीबों का मसीहा,
2: सड़क पर थे सभी जुलूस में शामिल हुए।
0: आपको कोई इतराज है? नहीं,
2: इतराज क्यों हो? ये सदा बाहर कौन है?
0: आपने नारे नहीं सुनी है क्या?
2: हाँ,
0: गरीबों का मसीहा यानी सदा बाहर।
2: सदा बाहर ये नाम है या
0: तकल्लुस? शायद लोग खुद ही अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि लीडरों को लोग अलकाब से नवाजते हैं।
2: आपके भी लीडर हैं?
0: नहीं, मतलब
2: नहीं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो
0: भी आप कहना क्या चाहते
2: हैं? कड़ाके की सर्दी में ये आपने फटा कंगा लोड़ लिया है, जाहिर है कि आप भी।
0: हाँ, मैं भी गरीब हूँ, हमारा मुल्क ही गरीब है। बेशतर लोगों के पास ओढ़ने के लिए फटी कंबल भी नहीं होती, बल्कि तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं होते।

0: उस पर तर्रा ये कि फुटपाथ पर सर्द हवाएं रोकने के लिए ना दीवारें होती हैं और ना बारिश से बचाव के लिए छत होती
1: है। ये एक तल्ख हकीकत है,
2: हम दोनों की सोच मिलती जुलती है,
1: जाहिर है समझ और ख्याल भी एक जैसे होने चाहिए।
0: मेरी तरफ से हाँ है, कटाऊ के गरीबों की बदहाली देखकर आप बेचारा पुत्र होंगे, अक्सर दिल में एक हूक सी उठती होगी, फिर दर्द होता होगा, दर्द नहीं कर्म का एहसास आपके वजूद को छपकर देता रहता होगा।
1: अक्सर ऐसी कैफियत जहन पर तारी होती रहती है।
0: अगर ये आपके दिल की आवाज है तो कुछ कर सके
1: कुछ करूँ तो मान लीजिए अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं
0: तो मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर भी नहीं कहूंगा, बल्कि रकम लेकर ये भी नहीं कहूंगा कि इसकी क्या जरूरत है, रकम ब्लैक में दे रहे हो या व्हाइट में?
1: ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है?
0: तो नहीं, व्हाइट में दोगे तो 40 लाख टैक्स में निकल जाएंगे।
1: समझ गया। समझ गया मैं,
0: ब्लैक में दूंगा।
1: ये बताइए कि आप रकम का क्या करेंगे?
0: सदा भाल से पूछ रहे हो कि रकम का क्या करोगे?
1: जी जी जी।
0: हाँ, ब्लैक में देने का आपको बोनस भी मिलेगा। खुलकर बात कर रहा हूँ साहब। हाँ
1: बिल्कुल,
0: मैं आपको 40 लाख का चेक दूंगा जो व्हाइट में होंगे।
1: आप कौन है?
0: मैंने सोचा कि आप अब तक जान गए होंगे कि मैं सदाबहार हूँ, गरीबों का मसीहा।

0: जी
1: जय ने क्या सेगमेंट को यहाँ कंक्लूड किया है?
0: नहीं नहीं अंकल, जय ने अपना डायरेक्टर पंच दिया है ना। सदाबहार के मुकालमे शाम को घर आना के साथ ही एक लंबी विदेशी कार हॉर्न बजाकर खड़ी हो जाती है। सदाबहार अपने फटे कंबल को कार में रखकर कार से एक शॉल निकालकर ओढ़ लेता है, फिर कार में बैठकर चला जाता है।
1: वाह वाह क्या बात है, मुझे मेरे खानदानों ने दुश्मन के दोनों चाय का लकब दिया है। मेरे ख्याल में जय खुद ही साबित कर देगा कि वो दोनों एक साथ
0: अर्जुन पांडव है। अंकल अगला सेगमेंट तो और भी दिलचस्प है।
1: अच्छा
0: हाँ, जय ने ये सेगमेंट जितनी खूबसूरती और फिक्री अंदाज में फिल्माया है ना, वो अपनी जगह और वो कहानी अंकल मैं फिर कभी सुनाऊंगी। पहले ये बता दूं कि जय कश्मीर में वहाँ के दस्तकारों, सियाहत से ताल्लुक रखने वाले होटल वालों, शिकारे चलाने वालों और हाउस बोट के मालिकों पर अपनी सारी तवज्जो देना चाहते थे, मगर इंटरव्यू किया एक मासूम औरत का।

0: अभी हाँ, जो साथ आ सकते थे वो बिछड़ गए हैं मुझसे।
1: आप पर्दा उठाकर वहां बैठ जाए।
0: पर्दा उठा दू क्यों? अपनी इज्जत और आबरू बचाने की खातिर तो हम घर से पिघल हो गए हैं। तुम लोगों को देखकर मैं समझ बैठी थी कि बियाबानों में बाहर आई है, लेकिन तुम लोग
1: प्लीज प्लीज आप गुस्सा थूक दो प्लीज। हम लोग जिसका यहाँ इंतजार कर रहे थे वो गालिबन आप ही हैं।
0: मैं ही तो हूँ जो बच गए मरकर जिंदा रहने के खातिर।
1: मैडम
0: नहीं कह सकते।
1: माता जी आप मेरी बात आराम से सुन लें। देखिए हम यहाँ जिस फीमेल समाजी कारकों का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं हम समझ बैठे आप वही हैं। यकीन कीजिए प्लीज।
0: क्यों क्यों हमारे हाथ

0: में बदकी तस्वीरें खींच कर उन्हें पेंटिंग्स बनाकर उनको बाजार में सजाने की खातिर हाँ इमोशनल बात
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। हम चाहते हैं कि दुनिया वाले आप लोगों की हालत से बाखबर रहे। लगता है कि आप भी जुल्म और सितम का शिकार हुई है।
0: हाँ, और नहीं तो क्या, सहर से शाम तक और फिर शाम से सहर तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा है जब हमें कभी कहर आदम या कहर खुदा से पैदा हो रहे हैं अजाब अजाब शदीद अजाब के एहसास का सामना न करना पड़ता हो।
1: मैं आपके दुख में शरीक होना चाहता हूँ, सच मानिए
0: बेटे, माँ बेटे को सुख में शरीक करना चाहती है, दुख में नहीं।
2: यस यस माय सन, आई ट्रस्ट यू। तुम सर्दी से आए हो, चलो चलो मैं तुमको तुम सबको कश्मीरी कहवा पहना दूँ, फिर बातें करेंगे। देखो यहाँ पास ही मेरा घर।
1: अच्छा अच्छा,
2: घर क्या एक छत है जो चार कच्ची दीवारों पर खड़ा है।
1: हम आपको चाय पिलाएंगे, प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज।
0: हाय हुआ है फॉर्मूला, माँ बेटे के खुलूस में अपनायत की आज सुखनी आज को महसूस कर चुकी हूँ मैं।
1: मुझे आपकी बातों में बल्कि गुस्से में भी दर्द की चीखें सुनाई दी थी। एक माँ को अपने सामने देखकर सुकून महसूस कर रहा हूँ।
0: देखो तो एक वो है जो माँ को बेटे से जुदा कर गए, और तुम जो गैर होकर भी मुझे बेटे के सामने बेटे का एहसास दिला रहे हो।
1: शुक्रिया माता जी। मैं एक सवाल पूछ लूं?
0: पूछने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई हूँ कि बेटा माँ से क्या पूछना चाहता है। मैं इस दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आठ आठ फुट बर्फ पर धस धस कर चलकर क्या ढूंढ रही हूँ? यही ना बेटे, हम लोग यहाँ भाग कर अपने घर खुले छोड़कर इसे गांव में बनाने में आए थे।
1: मुसलमान होकर मेरा अंदाजा सही है।
0: हाँ, मैं मुसलमान हूँ मगर सतमसठ हूँ, क्योंकि सितमगढ़ मस्जिद नहीं होता इसलिए मजहब के नाम पर मसीहाई का दावा करने वाले अपने मकसद और मतलब को मजहबी रंग देते हैं। बेटे
1: आप भी अपने हम वतन हिंदुओं की तरह हिजरत कर गए हैं।
0: वो अच्छे रहे जो दूर दूर रहकर भी अपने घरों में लौटने की हंसी में हाथ देते रहते हैं। हम आस पास रहकर अपनों से बहुत दूर हो चुके हैं।
1: उनके बेटों को गोलियां मार मार कर खौफ ज्यादा करके भगाया था।
0: मेरे बेटों को दर्शन कर बरगला कर ले गए थे, वो सड़क पार करते वक्त गोलियों का शिकार हो गया। मेरी बेटी अपनी आबरू बचाते हुए जान गंवा बैठी। मेरे शौहर का कसूर ये था कि उन्होंने एक फौजी का ऑपरेशन किया था। वो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर रहमान भट्ट, मरहूम। उसी गलत उनकी कार रोक कर गोलियों के पछाड़ हुए थे, बड़े जुर्म सजा पाए थे मरहूम। मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए गनमैन अपने साथ ले जाने पड़ते थे। मैं एक प्रोफेसर थी ना, प्रोफेसर जाहिदा भट्ट, जिसको सरकार ने इंसान दोस्त डॉक्टर मरहूम डॉक्टर भट्ट की बीमा होने की वजह से जैसा दी, तो दहशत गर्दों ने उसको एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर
1: किया। तशद्दुद की इंतहा हो गई।
0: पर आप हिजरत करने वालों का बार बार जिक्र भी करते रहते हैं,

0: जयदेव की फिल्म देखकर सभी जान जाएंगे अंकल। हाँ, प्रोफेसर जाहिदा के अनजान पे रोना आया, गोया आंधियों से गुलशन उजड़ गया और सैलाबों से बीच तक उखड़ गया।
1: ये लग रहा है जैसे मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कुछ होने लिखा से लिखा हुआ, कुछ आंसुओं से मिटा हुआ।
0: हम सबसे चौंका देने वाली बात ये है अंकल कि जब बातों बातों में प्रोफेसर जाहिदा से 1 करोड़ की बात की तो उसने वो रकम उन फौजियों की बेवाओं को देने की दिली ख्वाहिश का इजहार किया जिनको दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया है। खैर, अगला सेगमेंट भी बहुत इम्प्रेसिव है अंकल और बहुत कुछ कन्वे कर रहा है। इस सेगमेंट की शुरुआत एक एग्जामिनेशन सेंटर के इर्द गिर्द छाए माहौल से हो रही है। फासू इस हिस्से का मरकजी किरदार एक नौजवान लड़का है। वो कई लड़कों को उनके मुश्किल सवालात के हल बता चुका है। फिर जब तमाम उम्मीदवार हॉल में दाखिल हो जाते हैं वो तन्हा है और फटी फटी आंखों से हॉल को देख रहा है।
2: ये जो लड़के आपके आसपास आते जाते रहे क्या आपके दोस्त हैं?
0: हाँ, कुछ अजनबी भी थे।
2: आपसे क्या पूछ रहे थे?
0: टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस के टिप्स और उन सवालों के हल या जवाब जो उनको नहीं आते थे।
2: आपको आते थे?
0: हाँ, और वासु करे तो क्या करे। सारा कॉलेज जानता है सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ ना। मुझे शाइनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है।
2: That's very good, very good. ये टेस्ट किसके लिए जा रही है?
0: MBBS के दाखिले की खातिर।
2: आपका एडमिशन हो चुका?
0: नहीं, और कभी होगा भी नहीं।
2: क्यों? आप तो शाइनिंग स्टार हैं।
0: उससे क्या होता है, अब वासु करे तो क्या करे। मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिलता है जो रिजर्वेशन के दायरे में आता हो, जो सिफारिश के पर लगा के उड़ सकता हो या फिर डोनेशन दे सकता हो। मेरे पिताजी एक क्लर्क है।
2: क्या शाइनिंग स्टार होते हैं क्या? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप क्या करेंगे?
0: 20 लाख अपने MBBS के एडमिशन के लिए, 10 लाख अपने MD के दाखिले के लिए, बाकी रकम अपने पिताजी को दूंगा ताकि वो मेरे 2 छोटे भाइयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें, खूब खिला पिला सकें और अच्छे कपड़े पहना सकें, मेरी बहन की धूमधाम से शादी करवा सकें और अपने लिए गर्म कपड़े ला सकें और फौरी तौर पर एक नया जूता खरीद सके। उनके जूते उनके पैरों को बिच्छुओं की तरह डंक मारते रहते हैं।
1: वाह, समंदर को पूजा में बंद कर दिया जाए।
0: बस सकेंगे इस विजुअल पंच अंकल। आखिर में वासु की अश्कबार आंखों पर आसमान में तैर रहे काले बादलों का एक इफेक्टिव शॉट गरज की गूंज ओवरलैप कर दिया है।
1: अपने जय की फिल्म की गूंज दूर रहकर भी पास पास सांस पास सुनाई दे रही
0: है। गोया आपको भी जयदेव की फिल्म अच्छी लगी?
1: और नहीं तो क्या। आखिर नटराज के शागिर्द की तकलीफ है।

भी आप सुन रहे थे जनाब वीरेंद्र पटवारी का तहरीर का ड्रामा ग्रहण। पेशकश मोतीलाल काचरू की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे श्याम अरोड़ा, जयश्री अरोड़ा, नीरज शर्मा, हर्ष बाला, कीमती आनंद, चांद नारायण सक्सेना और रश्मि नागपाल। मॉडरेटर थी रिहाना बेगम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसीकार

और समीली जब सुनी अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो और साथियों को फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके, नगमा निगार समीर, मौसीकार अनु मलिक।

हम हैं राही प्यार के, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। नगमगार थे समीर, मौसीकार नदीम श्रवण। और सामने ये सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में जौहर इन कश्मीर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया कल्याण जी आनंद जी।

झूठा फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में आक्रमण फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत।

0: अच्छी थी वो।
1: पथ पे चला उस पथ में।

Oh.

जाना।

Yeah.

0: सभी सर्वे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 बरस के दौरान गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुई। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं और फीफा आर्मी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 बरस में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीके को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। इस अरसे में भारत में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई निजाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को वसअत दी है। भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिल तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शिनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खिदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसां इंटरफेस यूपीआई अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह आधार, डिजी लॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निजाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाख्तियार बनाया है और हमजहद तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फायदे पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी अवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मौसर जरिया बन चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज फ्रांस के 4 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। वजारत खजाना के मुताबिक वह इस दौरे के दौरान आला सतह की दो तरफा मीटिंगों में शिरकत करेंगी, जिनका मकसद भारत फ्रांस कलीदी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना, इकतसादी तआवुन को फरोग देना, सरमायाकारी में इजाफा करना, नीस टेक्नोलॉजी और अख्तरा के शोबों में तआवुन को बढ़ाना है। मोहतरमा सीतारमन फ्रांस के अपने हम मनसब के साथ भारत फ्रांस इकतसादी और मालियाती मुजाकरात की मुश्तरक तौर पर सदारत भी करेंगी। ये मुजाकरात एक्सन प्रोविंस में मुनक्किद होंगे। वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजलास में दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल करेंगे और भारत फ्रांस इकतसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर

0: एक्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ थी आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवा ए शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराय की प्रोग्राम झोंक माहिती।
2: मैं रीना कौल आप सबको राम राम ते नमस्ते करेंदी हां। अज मैं हाजिर हां आप सब दे सामने सिराय की सूफी संगीत दा एक प्रोग्राम घिन के ओ सूफी संगीत जड़ी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है ते उम्मीद करेंदी हां तो आपको ये प्रोग्राम पसंद हो सी। मैं

मेरी रूह विच वसदा लाल सखी, मेरी रूह विच वसदा लाल सखी, मेरे कलब दा नारा अली अली, मेरे कलब दा नारा अली अली, बन जोगन लाल कलंदर दी, बन जोगन लाल कलंदर दी, एह कहंदी फिरा मैं गली गली।

झल्ला पक्षी पक्षी झल्ला में पक्षी, झल्ला पक्षी पक्षी झल्ला में पक्षी, पक्षी झल्ला में पक्षी, पक्षी झल्ला में पक्षी, झल्ला पक्षी।

I'm not

0: फ्रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है।
0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गो से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: हम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारियां भी होंगी, मनोरंजन भी होगा। और आज जो है हमारे किसानों से जुड़ा ही दिन है, कृषि दिवस। भारत में कई हिस्सों में कृषि दिवस मनाया जा रहा है। कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका जो है खेती पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल।
0: और कृषि तो हमारे कहते हैं ना भोजन पर ही नहीं आधारित नहीं है, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ भी है।
1: बिल्कुल। और देखिए पृथ्वी में ना आज का मौसम है, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, उन्नत बीजों, ड्रिप एवं सिंचाई, मृदा परीक्षण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही जल संरक्षण और फसल विविधीकरण और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती अपनाना समय की आवश्यकता हो गया है।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके साथ साथ ये भी हम अपने भाइयों को बता दें कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के और कृषि को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये इनमें से मुख्य हैं।
0: जी बिल्कुल। और साथ में ये कहना भी मैं तो कहना चाहूंगी कि कृषि दिवस जो है हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारे जो किसान हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में भी देश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, उनका सम्मान करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना हम सभी की एक कहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये अपने भाइयों को हम ये भी बता दें कि कृषि दिवस हमें ये भी संदेश देता है कि किसान देश का अन्नदाता है और उसके परिश्रम जो मेहनत करता है उसका सम्मान हमें करना चाहिए और कर्तव्य भी उनका कर्तव्य भी है। और इसके इस अवसर पर हम कृषि को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने तथा किसानों को सम्मान और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने के लिए संकल्प करना चाहिए।
0: जी। और इसमें हमारी जो महिला किसान है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और हम ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आए हैं कृषि समाचार दर्शन के तहत, जिसमें हमारी जो महिला किसान है उनसे बातचीत की गई है और उस आधार पर उनके अनुभव को हम साझा कर रहे हैं। प्रस्तुति है संध्या गुप्ता की, आइए सुनते हैं कृषि समाचार दर्शन।
2: नमस्कार। कृषि समाचार दर्शन के एक नए अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। आज के अंक में हमारे साथ भी कुछ ऐसी किसान महिलाएं जुड़ रही हैं जो विभिन्न प्रकार की खेती कर रही हैं और खेतों को बचाने के लिए भी प्रयास कर रही हैं।
3: मैं सरोज सैनी गांव फतेहपुर बिल्लौर से एक सरपंच भी हूँ महिला और मैं एक महिला किसान भी हूँ। हम फूलों की खेती ज्यादा करते हैं, जैसे रजनीगंधा है, ग्लाइड है, सनफ्लावर है और गोल्डन घास है, डंडेला है। यहाँ पर दरअसल फूलों की खेती ही काफी हुई थी शुरुआत में। मेरे पति दिल्ली गए थे तो वहाँ फूलों की टीप रजनीगंधा जिसको टीप रोज बोलते हैं यहाँ पर, उन्होंने थोड़ा सा लगाया था तो अच्छा लगा। मार्केट में भी काफी फ्लावर्स का काम है और इस वजह से ही हमारा धीरे धीरे रुझान फूलों की खेती पे गया। मेरे परिवार का सबका पूरा सहयोग रहा है। मेरी जो देवरानी है वो मथुरा की है, उनके वहाँ भी खेती होती थी और वो सब्जियों की खेती करती थी, तो हमने आपस में सबने मिलके पूरे परिवार ने करी है। चुनौती तो आती है, कई बार ऐसा होता है कि माल निकल जाता है और वहाँ रेट नहीं मिलता तो लागत भी नहीं निकल पाती, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही कि कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी ही। महिलाओं का तो ज्यादातर सब्जी की खेती में रुझान ज्यादा रहता है और जो अपना मोटा है जैसे गेहूं बो दिया, धान बो दिया, ज्वार बाजरा बो दिया, मेन सब्जी में और मोटे अनाज में रहता है रुझान। आपस में मिलके हम लोग काम करते हैं मिलजुल के, तो भजन गाते हुए, गीत गाते हुए ये नहीं पता चलता समय कब हो गया और काम भी कितनी जल्दी हो गया। काफी महिलाएं हैं वो सब्जी के कामों में ज्यादा रुचि रखती है, मौसम वाइज सब्जी। कई बार अपनी यहाँ कैंप भी लगवाए हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा रुझान दे रहे हैं। खाद बीज की जितनी ज्यादा आज के टाइम में मांग कर रखी है ना, इस तरीके से हम जहर ज्यादा खा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये अपने गांव की महिलाओं को और जो किसान है उनको भी इन दवाइयों से बचाकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाना और कम से कम खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करवाना। उसे इंस्टीट्यूट से डॉक्टर और वैज्ञानिक बुलाती रहती हूँ और उनको जानकारी दिलवाती रहती हूँ इस विषय में। खेत बचाओ अभियान में मेरी विचारधारा यह है ये अगर हमारी कृषि योग्य भूमि को ही हम इंडस्ट्री को बेच देंगे तो एक आने वाला समय ऐसा होगा कि जैसे हम बाहर से और चीजें मंगा रहे हैं, हम अपने खाने के लिए सब्जी अनाज सब विदेशों से लेंगे। तो मेरी तो सरकार से ये प्रार्थना है कि खेतों को छोड़ करके बंजर भूमि को बेचा जाए, खेती को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, उसका संरक्षण करा जाए। और मैं तो लोगों को भी यही कहती हूँ, सलाह मशवरा देती हूँ कि अपनी खेती को बचाओ। जमीन बेच के तो हम चार दिन में पैसों को बराबर कर लेंगे, लेकिन अगर खेती है तो हमारी इनकम हमेशा बरकरार रहेगी और कृषि के माध्यम से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। महिला किसान होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कृषि में नई तकनीकों को अपनाने के लिए। मैं अपने गांव में समय से समय पर कैंप लगवाती रहती हूँ, डॉक्टरों को इंजीनियरों को बुलवाती हूँ, वो खेतों में भी जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि आप इस चीज के बजाय इस चीज को इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी पैदावार हुई है। लोग जैसे धान की खेती ज्यादा करते हैं तो कि धान के बजाय कपास बो, कोई और बो, दलहन बो, सब्जियां बो, इस तरीके से अदल बदल के मतलब खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम खर्चे में बढ़िया कृषि करें, बढ़िया खेती करें, बढ़िया आमदनी, इन चीजों की जानकारी समय समय पर दिलवाती रहती हूँ। उन्हें नई नई तकनीकियों से जोड़ती हूँ और नए नए सुझाव उनके लिए लेके आती हूँ मैं।
4: जी मेरा नाम रानावती है, मैं ग्राम पंचायत लोधौरा रमुआपुर में रहती हूँ। जी हम औषधीय खेती कर रहे हैं, अपराजिता का सीजन है तो हमने अपराजिता लगाई हुई है, दो साल से हम कर रहे हैं। हम लोग कर सके हैं, हमारे वहाँ अन्नदाता है, वहाँ से हम लोगों को सहायता मिली। आगे के लिए बताया गया कि 1 करोड़ से आपको लाभ मिलेगा, तो हम लोगों ने करना स्टार्ट किया तो हम लोग फायदा भी है। केबी के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से हुआ था, उसके बाद से हम लोगों को ग्राम पंचायत मनिकापुर मिला है, उसमें लोगों को प्रैक्टिकल खेती पे मतलब काम भी करना है और किसानों से करवाना है। तो हम लोगों के अंडर में 125 किसान दिए गए थे कि स्वयं करो और उनको भी सिखाओ। तो हम लोग खुद करते हैं, किसान है हमारे, उनको भी हम लोग सिखाते हैं। गोबर की खाद और जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, दस्तरडी अर्घ है, इनको डाला जाता है, रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता। मेरे पति, मेरे बच्चे हमारे साथ खेती में सब सहयोग करते हैं, साथ में काम करते हैं। लागत समझ लो जीरो पे ही आती है, क्योंकि हम लोग दवाई अपने हाथ से बना के डालते हैं, गोबर की खाद और गौमूत्र से बनाते हैं हम लोग दवाई, मतलब मुनाफा हो जाता है। हमने एक सीजन में 1 बीघा लगाया था ब्लू कार्न, उसमें 50,000 रूपए मिले थे, लागत आई थी मात्र 6,000 रूपए। उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, खुद काम करती हूँ, परिवार का भरण पोषण चलाती हूँ और अपने पति का हाथ भी बटाती हूँ साथ में, इससे मुझे खुशी मिलती है और हमारे परिवार वालों को भी खुशी मिलती है। जी 2026 महिला किसानों के नाम समर्पित है। खेत बचाओ अभियान में हमें अपने खेत की मिट्टी पे ज्यादा ध्यान देना होता है, तो हमारे खेत की मिट्टी अच्छी होगी, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो अधिक मात्रा में होंगे, जिससे हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे, लागत कम लगेगी और मुनाफा हमें अधिक मिलेगा। हम लोग अपने किसानों को जो बताते हैं, हमारे किसान हम लोगों की बात सुनते हैं और अच्छे से करते भी हैं। जब हम प्रशिक्षण देते हैं और लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें प्रशिक्षण देते हैं तो अपने किसानों से सम्मान मिलता है, और लेते हैं तो हम लोग भी अपने वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनको भी सम्मान देते हैं।
5: मैं मीना शुक्ला गोरखपुर से बोल रही हूँ। मेडिसिनल प्लांट की खेती करती हूँ और किसानों को करवाती भी हूँ। मेडिसिनल प्लांट में जैसे सतावरी, सुगंधा, मुसली, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, अकरकरा, जो हमारे पूर्वांचल के बेल्ट में अच्छी तरह से हो जाता हो, उससे मैं काम करती हूँ और प्लस उसका मार्केटिंग भी करवाती हूँ। उसी वजह से एक अपनी कंपनी डेवलप किए हैं, उस कंपनी का नाम है MBS एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी ब्रांच ऑफिस मऊ में है और हेड ऑफिस हमारा लखनऊ में है। आए किसान का दूधी करना चाहते हैं तो मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ में अगर बागवानी की खेती हम कर रहे हैं, मेड़ पर जैसे चारों तरफ हम मेड़ पर बागवानी का पौधा लगा दिए और बीच में मेडिसिनल प्लांट की खेती कर दिए, उससे अच्छा खासा इनकम किसान को हो जाता है। योजना चल रहा है PMSME योजना, गवर्नमेंट इसमें सुविधा भी ये दे रही है। जैसे कि PMSME योजना में ये है कि 35% कोई भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो 35% आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट है। उसमें क्या क्या ले सकते, जैसे

0: आप खेती करने जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट का पैसा नहीं है किसी महिला के पास, किसी भी महिला किसान के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट से लोन लेकर के ये काम कर सकती है। अभी तक मैं 500 महिलाओं को पीएम एसएमई योजना में जोड़ चुकी हूँ और एक नई तरह की रोजगार स्थापित मैं कर चुकी हूँ। हर महिलाओं का यही भाव रहता है कि हम कैसे आय को अपने हम कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक प्लान किया जाता है कि अब ऐसे ऐसे ऐसे करना है, तो जाकर के खेती में भी करती है और उनको आय चाहिए। आर्थिक स्थिति महिलाओं का मजबूत हो जाए तो हमारी भारत की जो आधी जनसंख्या है, 50% जनसंख्या है महिलाओं को, वो समर हो जाएगा। खेत बचाओ अभियान, केमिकल फर्टिलाइजर है हम ना उसको यूज कराएं, और ये जीवामृत अघन जीवामृत वो बना करके मैं खेत में डालने से उससे आर्थिक स्थिति किसान की मजबूत भी होगी और खेत बच भी जाएगा अपना। तो अगर खेत तभी बचेगा कि जब हम गौ माता को पालेंगे, गौ माता को पालेंगे उसकी जो खाद होती है वो खेत तक जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि एक सशक्त महिला होकर के और फील्ड में जाकर के काम करना। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि 21,000 रुपए का डेली का ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर व्यक्ति के लिए। समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको बड़ा करवाते हैं, फिर जैसे बहुत सारे काम किए हैं, तो अच्छा लगता है ना। किसी चीज की कमी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। अब मैं बहुत अच्छा उसको फील करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं आगे आकर के और एक काम करें जो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। आर्थिक अगर स्थिति मजबूत हो जाती है तो उससे वो स्वावलंबी बन जाएंगे। मुझे महिला किसान होने का मुझे बहुत गर्व है कि मैं महिला किसान हूँ और मैं देश के लिए समाज के लिए कुछ दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम सीता देवी, ग्राम पंचायत बिनेनी, ब्लॉक बिस्मा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैं इस वक्त अपराजिता की खेती कर रही हूँ और महिला किसान होने पर मुझे गर्व इस बात का है कि मैं महिला होकर जो है सफल कृषक का कार्य कर रही हूँ। हमारे पास एरिया है 1.5 बीघा, इसमें जो है हमारे घर वालों का सहयोग है, हमारे FPO वालों का सहयोग है। अप्रैल में हमने नर्सरी डाली थी और नर्सरी डालने के बाद मई में हमने रोपाई कर दी। निकाई से लेकर गुड़ाई तक की जो है सहयोग हमारे घर वाले करते हैं, सब भाई और माँ पिताजी। हमने प्रशिक्षण इसका 2 साल पहले लिया था। इसकी तुड़ाई इस वक्त चल रही है। इसको तोड़ने के बाद इसकी सुखाई की जाती, सुखाने के बाद इसको बोरी में पैक कर दिया जाता है। 10 महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। इस बार हमने एक नई योजना बना रखी है इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए, जिससे हम इसको जो है मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकते हैं। मुझे एक योजना बनानी पड़ती है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना हमें खेत में खर्च करना है, कितना घर पे खर्च करना है और कितनी हमें बचत करनी है, जिससे हमारे परिवार का संतुलन बना रहे। खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारे यहाँ प्रक्रिया यही हुई है कि जिस प्रकार से लोग ज्यादा से ज्यादा DAP यूरिया यानी कि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग से हमारे खेत की मिट्टी जो है अस्वस्थ होती जा रही है। और इसको जो है हमें सुधारने के लिए जैविक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती, जो कि बोलचाल की भाषा में गौ आधारित खेती के नाम से जानी जाती है, उसे हम अपना करके अपने खेत की मिट्टी को हम बचा सकते हैं। जब हमारे खेत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा खेत भी स्वस्थ रहेगा। किसी प्रकार की बीमारी ना हमारे खेत को लगने पाएगी, ना हमारे शरीर को लगने पाएगी। यही हमारे खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत चल रहा है। मेरे पास 3 गोवंश हैं, यानी कि मैं पशुपालन भी करती हूँ और उनकी देखभाल जो है मैं और मेरी मम्मी मिलकर के दोनों लोग एक साथ में उनकी देखभाल करते हैं, चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, गोबर और गौमूत्र का प्रयोग हम खेत में करते हैं। जब एक साथ में पैसा आता है हाथ में तो ऐसा होता है कि मैं किसी सरकारी नौकरी वाले से कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ आगे कर सकती हूँ। इतना पैसा मैं बचा लूंगी तो आगे मेरा भविष्य जो है और भी अच्छा हो जाएगा। किसी पर आश्रित ना होकर के मैं अपना स्वयं पर निर्भर होकर कार्य कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता कि मैं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो गई हूँ।
2: हमारा नाम आरती है, मैं ग्राम पंचायत पुरैनी ब्लॉक बिस्मा जिला सीतापुर से हूँ। प्राकृतिक खेती करवा रही हूँ हम, उसमें जीवामृत घन जीवामृत बनवा करके वहाँ डलवा रही हूँ खेत में, कि उपजाऊ ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो, खेत भी स्वस्थ हो। खेत की मिट्टी को बचाएंगे तभी हम स्वस्थ होंगे, आगे हम तभी बढ़ पाएंगे। हमारा भविष्य आगे तभी बढ़ पाएगा जो हमारे खेत की मिट्टी बचेगी। जैसे बाजरा है, मक्का है, कोदो है, रागी है, मड़ुआ है, ये हमको सब कुछ बो करके हमको खेत की मिट्टी बचाना है, कम लागत में पैदा करना है, उसी में हमको लाभ मिलेगा। हम महिलाओं का समूह बनाए, हमको कुछ नहीं आता जाता था, हमने समूह बनाए, समूह से ऋण लिया। अब पहले आरएफ आया था, फिर सीआईएफ आया था, उसी से हमने कृषि आधारित खेती धरी। हमारे पास खेत भी नहीं था, हमने खेती धरी, हमको बहुत अच्छा लगा। खेत धर के हमने फूलों की खेती करी, औषधि उसमें लागत भी कम लगी और हमको उपज भी ज्यादा हुआ। एक बीघे में हमने 25-30 हजार का फायदा मुनाफा उठाया हमने। और समूह की महिलाओं को भी यही करा रहे हैं। जैसे हमारा एपीओ बना हुआ है, एपीओ के द्वारा हम बेच देते हैं, तो हम ही अभी लगा रहे हैं फूल की खेती। समूह को महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी लगाइए। महिलाओं से भी कह रहे हैं कि किचन गार्डन, पोषण वाटिका बनाइए, अपनी आजीविका बढ़ाएं, पशुपालन करें, बकरी पालन करें। इसकी योजनाएं हमको कटिया केंद्र से मिलती है, जो छूट पे जो कुछ मिलता है, यंत्र मिलते हैं, बीज मिलता है, अरहर है, लाही है, धान है, सब बीज ब्लॉक से मिलता है, हम सबको दिलाते हैं किसानों को। जी हम लोग सबों के महिलाएं जब मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हिल मिल के बात है करते हैं, हिल मिल के फूल तोड़ते हैं, हिल मिल के वहाँ खड़े होकर के खेत की जुताई है और सब कुछ करते हैं। मैम कृषि आधारित हम बैलों से जुताई करके और प्राकृतिक खेती विधि से हम करते हैं।
3: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक यही सम्पन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: प्रीति बहन
5: जी,
4: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत महिला किसान से बातचीत, और बातचीत कर रही थी संध्या गुप्ता, उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।
5: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे ओमवीर आर्य की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, और आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। और आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पे आप सुनवाते हैं गीत गजल कार्यक्रम के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। आइए अब से कुछ पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल कोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई

0: इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण इसको मंजूरी दे दी गई है।
1: 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रूपये, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रूपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1,00,000 रूपये की सब्सिडी मिलेगी। N1 उससे एक

0: व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार, टू व्हीलर पे भी, थ्री व्हीलर पे भी, फोर व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की पहली जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्र निर्माण की सेवा में निरंतर समर्पित सभी डाक कर्मियों को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डाक कर्मियों के परिश्रम से देश में संचार सुविधा निरंतर मजबूत हो रही है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रूकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और निर्वाचन आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव पर श्री चौधरी ने कहा कि इससे आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने की स्थिति भी कम होगी।
2: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित, प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी तथा शासन व्यवस्था में निरंतरता और दक्षता को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं।

0: इस कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विभिन्न आदेशों को एकीकृत कर एक स्पष्ट, सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सभी विभाग, संस्थान और नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई कर सकें। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों का ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 के नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। टीका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री सूद ने आज जन सुनवाई के दौरान नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में हिस्सा लेते हुए अपना गणना प्रपत्र जमा किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। दिल्ली में SIR 30 जून से शुरू हुआ है। श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी SIR अभियान में हिस्सा लें और अधिकारियों को सहयोग करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि वाले सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पोस्ट हटाने के लिए कोई व्यापक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन 5 पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जिन पर श्री चड्ढा ने आपत्ति व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि यह मुकदमा व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित नहीं है। श्री चड्ढा ने इससे पहले कथित दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्टों के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ निखिल टंडन ने आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस वर्ष के विषय हीलर को हील पर बताया कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा या कमाई का माध्यम नहीं है। डॉ टंडन ने कहा कि इसमें मेहनत, लगन और डटे रहने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी उन्हीं की तरह इंसान है और उनसे फैसले लेने में गलतियां हो सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री चौहान ने बताया कि यह अधिनियम लाखों श्रमिक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल दिए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज

0: onair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आज प्रसारण भवन ने फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया। इस फोटो गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस गैलरी में विदुषी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर और डॉ भूपेन हजारिका सहित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान संगीत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में आकाशवाणी ने मुख्य भूमिका निभाई है। श्री द्विवेदी ने बताया कि आकाशवाणी अपने समर्पित चैनलों के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, वृत्ति संगीत, फिल्मी संगीत, रविंद्र संगीत और संगीत की अन्य विधाओं के लिए मंच प्रदान कर रही है जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और एकता मजबूत हो रही है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: दिल्ली पुलिस ने आज किंग्सवे कैंप में न्यू पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में औपचारिक परेड के साथ कमिश्नरेट डे मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने आज चाइल्ड सेफ्टी मंथ पहल के तहत दो दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ये पहल दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही है। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के तीसरे संस्करण के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजी अपनी टीमें तैयार करेंगी। इस नीलामी में 400 से ज्यादा पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ऋषभ पंत, मयंक यादव, सुयश शर्मा, हिम्मत सिंह और कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और बात मौसम की, दिल्ली में आज बादल छाए रहे जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 8:00 ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम आप सभी के लिए सजाकर लाए हैं चंद खूबसूरत से फिल्में गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बागबां के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

से उसकी स्वयं से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा

वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं ऐसे सांस बनाकर अपनी सीधे में बढ़ूंगा।

प्रोग्राम में आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए आप सभी के लिए ये प्यारे से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने इस समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 60,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 60,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कम्प्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: जीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रूपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रूपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समय अनुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार

0: साथ और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
2: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
2: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवीन्द्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देशभर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 9:45 पर आप खबरें सुनेंगे। बजकर 55 मिनट पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। जबकि 10 बजे अदब नशिस्त पेश की जाएगी और 10:30 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिली इरशाद। शायद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बर्रे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। साढ़े 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में और 11:45 पर कव्वालियां पेश करेंगे शंकर शंभू कव्वाल और हमनवा। जबकि 12 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग भैरवी और राग यमन। 12:30 बजे आखिरी शो प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुरानी फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशे वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम एक फनकार, इस प्रोग्राम में आज की फनकारा हैं आशा भोसले।
1: आशा जी यानी आशा भोसले एक वर्सेटाइल कलाकार, कमाल की फनकार, एक अलग अंदाज, एक अलग अदा।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे हैं आशा भोसले के गाए गीत और गजलों से।

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे आशा भोसले के गाए गीत और गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्कभर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शरहों को नोटिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीराजम सनाई ताकाइची भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वीं भारत जापान सालाना समिट में शिरकत करेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अलावामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के एटलांटा में इंग्लैंड और कांगो जमहूरिया प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज 2 शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में टनल से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इतिहाद और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गतिशक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना

0: तरफ से मुठभेड़ न लें और एक ही से अपना रिश्ता जोड़ न लें जब तक हर तरफ से रिश्ते काट न लें। तो इसके माना ये थे कि वो तौहीद के जरिए हमें बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आमादे बगावत करते हैं और इस ख्याल को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने बयान किया। एक और जगह लिखते हैं, याद रखो हर मोहब्बत के लिए एक बोझ दुनिया में लाजमी है और कोई आजी नहीं कर सकता जब तक के मगरूर भी न हो। नेकी को अगर पसंद करोगे तो उसकी खातिर बदी को बुरा कहना ही पड़ेगा और खुदा को खुश रखना चाहते हो तो शैतान की दुश्मनी की परवाह मत करो। तो ये लबुल हिसा बिल्कुल नया है और ये इंटरप्रिटेशन जो है तौहीद का वो भी बिल्कुल नया है।
1: तौहीद का ये इंटरप्रिटेशन इकबाल के यहाँ भी आपको मिलेगा। इकबाल ने आजादी पर जोर दिया, इकबाल की पूरी फिक्र में आजादी
2: कदरुल्लाह और मुझे बेखुदी में तौहीद के तस्वुर को जो इकबाल ने पेश किया है वो तो सब पेश होता है। लेकिन बात आपने जो फारूकी साहब कही है मैं उसे कहा करता हूँ, मैं उसको इस तरह कहूंगा कि उनकी जो मजहबी फिक्र थी उसी के सिलसिले में और उसी से मुंह पाकर एक सियासी फिक्र उभरती है और उस सियासी फिक्र में वहदत अदियान का तसव्वुर दरअसल उनको ले जाता है हिंदुस्तान की मुश्तरक तहजीब को अपनाने, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सीना सपर होने और उसके एक मुजाहिद आजम की हैसियत से काम करने में। और जब वो रामगढ़ के खुतबे हजारत में ये कहते हैं कि मैं इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हूं कि अपने इस्लामी वरसे का एक छोटे से छोटा हिस्सा भी छोड़ूं, सही, और इसी तरीके से मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूं कि अपने हिंदुस्तानी वरसे का एक छोटे से छोटा हिस्सा छोड़ूं, तो उससे साबित ये होता है कि उनके यहां इस सिलसिले में तादाद नहीं है।
1: सूर साहब, मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है, आपने जो अभी फरमाया कि इकबाल की मजहबी फिक्र उनकी मौलाना आजाद की सियासी फिक्र उनकी मजहबी फिक्र का नतीजा है, उससे पैदा होती है,
0: या
1: इस बात को इसके बरक्स यूं ही सोचा जा सकता है कि उन्होंने इकबाल ने जो मौलाना आजाद ने जो मजहब का तस्वूर पेश किया है वो उनके सियासी मकासद के ताबे है और इसीलिए उन्होंने वहदत अदियान या तौहीद में खासतौर से तौहीद का जो मुजमरात में से है आजादी
0: उस पर तस्वुर तो कुरान में मौजूद है।
2: भारत आप देखिए, एक बात मैं कर रहा हूँ, तारीखी तरतीब को अगर आप देखिए तो अल हिलाल के मजामीन में इस्लामी पहलू मजहबी पहलू ज्यादा नुमाया है और सियासी पहलू कम नुमाया है, महीने के तक नहीं है। तो मेरे नजदीक तो ये मामला जो है वो ये है कि मजहबी फिक्र बिलाखिर सियासी शक्ल इख्तियार करती है या सियासी पहलू भी,
0: और ऐसा बराबर हुआ है
2: और इसमें कोई ऐसी गैर
0: मामूली हिंदुस्तान का जो मूवमेंट है, यानी शुरू में वो बिल्कुल प्यूरिटन मूवमेंट है और आखिर में उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल में तब्दील हो जाता है, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन की शक्ल में जाहिर होता है, तो ये चीज तो बराबर रही है।
1: वो लाजिम व मलजूम है, मेरा ख्याल है कि इन दोनों को अलग करना मुश्किल है कि आप तकद्दुम किसको देंगे।
2: नहीं, खैर आप उसे अलग न कीजिए, लेकिन ज्यादा जरूरी बात जो है वो ये है कि हम इस पर गुफ्तगू कर लें कि ये जो उनकी फिक्र थी और ये जो उनकी रिवायत थी वो जिस असलूब में जाहिर हुई वो उसके लिए मौजूद था या नहीं था, और इस रिवायत की मकबूलियत में इस असलूब ने मदद की या मुश्किल पैदा की। इसलिए कि आपको तो मालूम है कि मौलवी अब्दुल्ला साहब क्या कहते थे आजाद के असलूब के मुतल्लिक, वो उसको उर्दू का अच्छा असलूब नहीं कहते थे, लफ्ज इस्तेमाल करते थे वो यहां मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो ये कहते थे कि अहलाल की उर्दू जो है वो अच्छी उर्दू नहीं है। तो मामला जो था वो ये था कि अपने उर्दू के जरिए से, अपने असलूब के जरिए से वो अपने मजहबी, इल्मी, सियासी, अदबी अफकार को आम करना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने काम किया है। रिवायत के सिलसिले में अहलाल ने बाद नई चीजें पेश की हैं, ये मामला रहा उसका। तो ये असलूब जो है ये उनके इस नुक्ते नजर के आम होने में मुआविन हुआ या हारिज हुआ?
0: मैं समझता हूँ मुआविन हुआ, उसमें मौलाना की इल्मी पस मंजर को हमें सामने रखने चाहिए, फिर जिन लोगों को वो मुखातिब करना चाहते थे, जिन लोगों को
2: जल्दी से कह दिया
0: आमादा अमल करना चाहते थे,
2: मेरा ख्याल ये कि वो मुमकिन है कि मुआविन हुआ हो कुछ हद तक, लेकिन बड़ी हद तक बाद में मुआविन नहीं हुआ।
1: हाँ, लेकिन उस दौर में जिस दौर में मौलाना लिख रहे थे हिलाल और अलबलाग में, उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो उस जबान को, उस उसलूब को समझ सकती थी। दूसरी बात यह है कि मौलाना ने सहाफी की हैसियत से अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया है, दूसरी तरफ वो बहुत जबरदस्त खतीब भी थे, तो उनकी खिताबत का असर उनके उसलूब में नुमाया हुआ और उससे उन्होंने काम लिया, जिसकी वजह से उन आम पढ़ने वालों में उनके उसलूब की अपील उस वक्त बहुत

0: थी। लेकिन अब सवाल ये है कि मौलाना ने जो इल्मी काम किया है उस इल्मी काम के लिए मौलाना की नसर क्या इस वक्त काम दे सकती है, उसके लिए मुनासिब व मुफीद हो सकती है।
1: ये दिलचस्प बात है, इसलिए कि यहाँ एक हमको पैराडॉक्स से सबका पड़ता है, एक कारोबार से सबका पड़ता है। यानी फारूकी साहब ने तो फौरन तस्लीम कर लिया, मुझे जरा उसमें तामुल है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना का असलूब इस लिहाज से यकीनन एक काबिल कदर उसलूब है, एक बरगुजीदा उसलूब है कि उसमें इल्मी और मजहबी और सियासी अफकार के अदा करने की सलाहियत मौजूद है और इस लिहाज से उसने उर्दू को मालामाल किया। लेकिन उर्दू में कुछ उर्दूपन कम भी कर दिया,
0: यानी उस उसलूब में कुव्वत है, जोश है, शिकोह है, जज्बांगेजी है
1: और वो,
0: लेकिन ये कि ये उसलूब इस तरह का जिसमें ये शौकत हो,
1: जज्बांगेजी
0: इल्मी काम के लिए मौजूद है या नहीं। मसलन मैं समझता हूँ कि इस्लाम पर जैसे मौजूदा दौर में हाल में जो काम सबसे अहम किया है डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब ने, उनका उसलूब उस तरह के इल्मी काम के लिए जो मौलाना का खुद मतमह नजर था वो ज्यादा मौजूद है, जो हाल ही का एक तरह से उसलूब का।
1: हाँ, तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मामला जो है वो ये है कि मौलाना तो जाहिर बात है कि अपनी तबीयत से मजबूर थे, जालिम थे, अरबी का बहुत गहरा मतला था उनका, मिजाज में वही अरबियत थी। और मैं यहां तक भी तस्लीम करने को तैयार हूं कि उस अरबी उसलूब की वजह से हमारे उर्दू के उसलूब में एक जजालत पैदा हुई, एक बदलांगी पैदा हुई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तस्करे में तो खास तौर पर, और उसके बाद अलहलाल के मजामीन में भी और अलबलाग के मजामीन में भी बड़ी हद तक ऐसा उसलूब है कि वो आम फहम नहीं हो सकता। उसमें से बहुत से अल्फाज उस तरह ऐसी आती हैं कि जो आज के दौर में तो लोगों के लिए बिल्कुल असलफहम होंगे, नहीं आएंगे।
2: लेकिन सरोजा, आप उन तहरीरों को उस कॉन्टेक्स्ट से अलग करके क्यों देखें? मेरी गुजारिश यह है कि अल-हिलाल का पर्चा एक आदमी खरीदता था और ऐसे क्लब बना दिए थे जिसमें 15-15, 20-20 आदमी बैठते थे और उसका एक एक लफ्ज पढ़ते थे, तो उसको तो किंग जेम्स की बाइबल की तरह पढ़ा गया और लोगों ने उस पर सर धुना और वो बतौर तोहफे के वो मजामीन काट करके दूसरे लोगों को भेजे जाते थे जो ये मकबरत में रखते थे कुछ खरीद सकें। मौलाना मोहम्मद अली और सब ये कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद खरीदारी थी उर्दू के किसी अखबार की नहीं हुई, तो इस एतबार से उस जमाने में तो वाकई वो
1: नहीं। मैं आपको नतीजा सुनाना चाहता हूँ। कैंडल स्मिथ ने मुझसे यह कहा कि परवान कुरान का वो तर्जमा अंग्रेजी में करना चाहते थे। उन्होंने
3: अभी आप समाप्त कर रहे थे अदबी नशिस्त, मौजू था मौलाना आजाद की इल्मी और अदबी रिवायत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामिले इरशाद का। आज के प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपका दोस्त, आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आधा वर्ष दोस्तों, और आज आपसे मोहब्बतों का इजहार करने और मुलाकात करने की हैट्रिक हो गई है। दिल तो चाहता है कि रोज मुलाकात हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बहरकैफ मुलाकात ये के बाद दीगरे तीसरी मुलाकात। चलिए इसी बात पे एक कव्वाली आपकी नजर करते हैं, उम्मीद है पसंद आएगी क्योंकि आप ही की पसंद पर है जनाब।

स्वयं लुधियानवी का कलाम और रोशन की मौसीकी, ये था कॉम्बिनेशन पहली पेशकश का बहू बेगम फिल्म से। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में थी ये कव्वाली। और जहां तक पसंद की बात है, इसको पसंद किस किस ने किया था वो भी तो बताना जरूरी है जनाब, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। चलिए तो जनाब पहला ईमेल इस प्रोग्राम का शामिल करते हैं, सांगली जिला जत शहर से है अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला और सबाहत हुजरे का। इसी कव्वाली की फरमाइश की थी कोल सिटी बरकाकाना से अफजालता शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम ने। और आप हैं मलियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, सीएम जैन, साथ में मास्टर जीवीएम जैन। और ये फरमाइश मिली है अलीगढ़ से सलीम अख्तर और रेशमा बेगम की। इसी कव्वाली से महजूज हुए थे मोहम्मद रफीक पवा, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। और आगे दीवान एमपी से फरमाइश की रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल और उनके कुछ और साथियों ने। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा की फरमाइश थी पटेली रोड गंज टंडवारा से। और रश्मि और जरना ने फरमाइश की राजकोट गुजरात से, साथ में उनके भरत कुमार। और इसी कव्वाली को सुनना चाहते थे रेलवे रोड गंज टंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगमनाज, बेबी फातिमा गाजी, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जैस्मिन की फरमाइश थी राजकोट के जयराज प्लॉट से। और बड़े रेबी चौराहा वाराणसी से फरमाइश मौसूल हुई अरुण कुमार मालवीय दर्द की, साथ में सरिता मालवीय भी हैं। आज एक नाम का इजाफा हुआ इसमें, नया नाम है, खुशामदीद आपका। और ऊपरकोट मौला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी की भी फरमाइश हो गई है मुकम्मल। और

अगले मिले नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, साथ में रविंद्र सिंह छाबड़ा, और दाऊसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर की फरमाइश थी। और इसी कव्वाली के लिए कुछ और ईमेल मिले। राजू माठे, गजान सालूकर, सुरेश भिसे पाटिल, बुलढाणा महाराष्ट्र के आसलगांव बाजार से, और अलीगढ़ डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, कुलदीप गांधी भी सुनना चाहते थे इससे पहली पेशकश को। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, साथ में बिट्टा बजाज। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। मरून कलर में लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत, हिंदी और उर्दू दोनों में है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा का यह ईमेल, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, ये भी रंग बिरंगा ईमेल है। और संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया, घंटाघर चौक खंडवा से। और इसी कवाली की फरमाइश की थी पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन ने। और आप हैं गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली और उनके बहुत सारे साथी। तानाशाह प्रोग्राम की अगली पायदान पे कदम रखते हैं दोस्तों, और आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया हुआ मैजिक बॉक्स फिल्म का नगमा। बोरोस ईरानी की मौसीकी और इंदीवर ने इस नगमे के बोल कलमबंद किए, और इसको सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामीन। बल्लापुर लुधियाना से बर्जर जैन, घटना जैन और रसगुल जैन, ये नाम कुछ अलग से हैं। वैसे तो हमारे यहां से और भी दोस्त फरमाइश भेजते हैं। चलिए अब ये जो नए नाम है इनका हम खैर मकदम ही करेंगे, कहेंगे भाई खुश आमदीद आपको। महिमा टीला दिल्ली से, कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, और रंजीत, करण रंजीत पुनकर इनका पूरा नाम है, ऐसे गांव बाजार से फरमाइश है आपकी। स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह और इनके पोते हैं गुरनूर सिंह और उनके कुछ और साथी, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हजरपुर मटकरी जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, और ये फरमाइश आई है सुब्रत चौधरी की कोलकाता से। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं, आप है डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, भुवन प्रकाश गौतम, अमीर खुसरो रोड, गंज डुंडवारा से। और गंज डुंडवारा से ही एक और ई मेल है, शेरवानी स्कूल से हैं आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर, सतीश अनेजा, विमला अनेजा के साथ चंडीगढ़ सिटी से शामिल हो रहे हैं तामिलेशात प्रोग्राम में। और अशोक दले साथ में हैं उनके, सविता दले, अनिकेत दले, कुमार गली, श्रीरामपुर से। ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्वनी आनंद और मनवित रमेश का। अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे और साथ में शुभम बेंडे आकोट से हैं। जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, साथ में उनके अंजुमन खान है। कदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से आपकी फरमाइश है। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, साथ में है उनके उत्कर्ष चौहान। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फलनाजा, गोकुल चौक, गंगजिला सहरसा से। बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा। और अगला ईमेल है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और आप हैं कुमार हेड़ा गांव सहारनपुर से सैयद मरसू, शाहिन हसन, नाजिया इब्राहिम। और अगला ईमेल रिपीट हो गया बहुत जल्दी, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा वरना ये सेल्फ गोल हो जाएगा। बागपत यूपी से संजय ढींगे, नमन ढींगे, साथ में अपार, और अपार खुशी भी मिली होगी नाम शामिल होने पर। मेहनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहनकर, राई सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुग्गू। और ये फरमाइशी मेल है उन शरारती बच्चों का जो अभी तक जाग रहे हैं, जुम्मा नगर खंडवा के हैं बच्चे अल्तमश, समीना और मुदस्सर, थोड़ी सी पढ़ाई भी क्या करें। मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह हमारे बहुत पुराने सामाईन में से हैं, और अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर भी शामिल हो गए जनाब। तो मेरा ख्याल है कि अब नगमा सुनवा दिया जाए, बहुत नाम शामिल हो गए हैं।

छंद जोशी, तनुजा जोशी और फाल्गुनी जोशी, और ये ईमेल मिला है राज पैलेस ममनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा का, राहुल मनवर सरला और साथ में उनके बेबी प्रियांशी शाहूनगर यवतमाल से, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से फरमाइश की है मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने, और इसी नखमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रावे शेख, शेख रहीम मुन्ना, और आप हैं तंबरम चेन्नई से शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली, इनकी बेटियां हैं। मास्टर विट्ठल सुरोशे, मायरा सुरोशे, साथ में उनके हैं सुषमा सुरोशे, काटा रोड वाशिम से, और इसी नगमे को पसंद किया है बरगद बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी ने, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान हनुमानगढ़ राजस्थान से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं हनुमानगढ़ से ही, एक और ईमेल हमें मिला है गांव नाईवाला से, वेद मिड्ढा साथ में अलका मिड्ढा, डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद हैं 3 चौरादा भिलाई छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम शेख, बेबी अलिजमा है रघुवीर नगर दिल्ली से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है कस्बा बराड़ा अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल का, दिलावा खान, हसीना बानो और लड्डू हैं रघुवीर नगर दिल्ली से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं झुमरी तलैया से महेंद्र चौरसिया और शशि चौरसिया, और आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका भानु उत्तम नगर दिल्ली से, और रामगढ़ कैन से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहिब, और ये फरमाइशी ईमेल मिला है वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा का, और डॉक्टर गजानन कुमार, पद्मावती कुमार और साथ में मधुरा अकुरा महाराष्ट्र से, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती, और बाना यूपी से फहीम मंसूरी अदी और फातिमा मंसूरी। तो चलिए जनाब, नाम शामिल हो गए, अब नगमे की बारी है और ये खूबसूरत नगमा आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म तो हमने बता ही दी आपको, मेरा कसूर क्या है, यही है ना फिल्म? जी हाँ।

और अब आपको सुनवाते हैं काबिली खान फिल्म का दोगाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ चित्रगुप्त की है मौसीकी और नगमा निगार मजरूह सुल्तानपुरी। सुनने के मुतमन्नी आप तमाम सामिन अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक साथ में हैं गव्या मल्होत्रा और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। गुजरात के गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी प्रथम सोनी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राय मेरा जहान आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं और मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल शबीर मनट्टी आसिफ इकबाल की फरमाइश है गुलबर्गा कर्नाटक से और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है। पश्चिम थोक गंज डुंडवार से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी मुनव्वर हुसैन अंसारी साथ में नईम रजा सिद्दीकी और सुदर्शन शाह पल्लवी शाह साथ में है कुशल शाह पद्मा टॉकीज नेपालनगर एमपी से और करणवीर हाउस भूचो कैच बटिंडा पंजाब से फरमाइशी ईमेल मंजीत कौर जौड़ा कुलदीप और सीमू एकम का है और अगला ईमेल मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो विलिस डिकेस्टो का। इसी नकमे को सुनने के ख्वाहिशमंद है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवा डैनी पवा मास्टर मनीष और रामदेवड़ा से दिनेश चौहान और सुभाष योगी राजू मिगलानी बब्बू डब्बू कृष्णा कॉलोनी खासी से हैं मनोज जेठवा हर्ष जेठवा बुराव के नगर श्रीरामपुर से और ये फरमाइशी मेल मौसूल है गुलाब दास मानिकपुरी राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का लेवाई छत्तीसगढ़ से। अगला ईमेल गावना थाना पंजाब से मिला हरजिंदर छिंदा जसवी जस्सी और गीता का। इसे नकमे को सुनना चाहते हैं सुनील आर सुनील सामग और अंजलि सुनील छत्रपति संभाजी नगर से और ये फरमाइश है वसीम अकरम सवालिया खातून गुड़िया खातून की पटना बिहार से। कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार चंद्रकला पोपल घट और एहलखाना जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा दिशानी है। इसी नकमे को सुनना चाहते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी कामले और ये फरमाइशी मेल बुल्टाना वडशिंगी महाराष्ट्र से मिला है अमोल मान का शोभा तैमान का श्लोक का। इसी नकमे को सुनने के मुतमन्नी है इम्तियाज इमाम आतिश ताहिरा परवीन आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा गिरडी झारखंड से।

0: क्या उमदा शायरी थी इस नगमे में मजरूह साहब की, और जरूर आप महसूस हुए होंगे ऐसे ही चंद और नगमे आप ही की फरमाइश पर आपको सुनने को मिलेंगे तामिल इरशाद प्रोग्राम में, आप कहीं नहीं जाइएगा। फिलहाल वक्त हुआ है आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से खबरें बरे सगीर से के उर्दू न्यूज बुलेटिन का।
1: आदाब, यह आकाशवाणी है, बरे सगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराहों के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत और मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराहों के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,979 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तला नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबराई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।

सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्कियात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रूपये योमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम न हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एनजी नरेगा के तहत 298.80 रूपये योमिया से बढ़कर 327.40 रूपये योमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को खत्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इन्हदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इन्हदामी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तशवीश जाहिर की। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेर हिरासत शहरी कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माहीगीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माहीगीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेरे हिरासत शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई एहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाके रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वितिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेज कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम ताकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची का यह भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरे के दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। यह चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दोतरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी और जापान की वजीर आजम के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमतनामों के तबादले की उम्मीद है। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक ने सीशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अजम को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबकत रखता है। इस दौरान सीशेल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशावराना इस्तकबालिया और कम्युनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया।
एक

कैसे कहूं। नहीं, ये कोई जुमला नहीं जनाब, ये तो फिल्म का नाम था जिसका नगमा भी आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। सचिन देव बर्मन की थी मौसिकी और शकील बदायूं साहब ने इस नगमे को कलम बंद किया था। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे बहुत सारे सामईन। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं चूंकि बहुत सारे ईमेल इकट्ठे हो गए हमारे पास। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, निर्वृत्ति शेर सागर और मोहम्मद यूनुस खत्री, साथ में उनके मोहम्मद सादिक खत्री, अयुब खत्री भी हैं, छिपा कॉलोनी खंडवा से हैं। इसी नगमे को सुनना चाहते थे डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सुनर प्रसाद जाधव, नेहरू चौक पैठण से, और रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, कस्बा बराड़ा, अम्बाला, हरियाणा से हैं। और यहां मुझे थोड़ा सा डाउट है, कहीं ये पहले शामिल तो नहीं हुआ ईमेल। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और मयंक भाटिया, टोरावाल नवाशहर से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी और डॉक्टर प्रशांत थांडी, और आप हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, मेन बाजार कुंडलवाड़ी से, सुनील जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल की फरमाइश है जामनिया गाजीपुर से, और अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं, और विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति की फरमाइश लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से थी। इसी नगमे को सुन रहे थे नथुराम शर्मा, ललित शर्मा और सुरेश शर्मा, मंडी हरिराम मलोट से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान की फरमाइश थी जोधपुर राजस्थान से, और आप हैं एम असलम सैफी, जीबुन निसा बेगम, मुसद्दाम सोनी, बिलराम गेट, कासगंज से आपकी फरमाइश हमें मिली है। छत्रपति संभाजी नगर से सुनना चाहते थे इस नगमे को राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राजी राजेश, टंग ट्विस्टर से बन जाते हैं कभी कभी कुछ नाम। पंद्रहगावड़ा से अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, और आप हैं महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे, वरुण जौलका से। अगला ईमेल है प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुजाता पोहरकार का, मेन रोड तेलहारा से हैं, और संजय डाबीराव, डॉक्टर रसिका डाबीराव, डॉक्टर कौस्तुम डाबीराव, विदर्भ आकोट से थी आपकी फरमाइश। अस्तुपराज जरा मऊ से सुनना चाहते थे इस नगमे को मजहर अली अंसारी, रजे बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और बंगाली पंजन नागपुर से फरमाइश की भारती प्रकाश रंभाड़े, जाह्नवी रंभाड़े, वैष्णवी हर्षल रंभाड़े ने, और आप हैं साईनगर आरवी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, और साथ में प्रियदर्शनी मिर्गे। इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे किशोर नगर अमरावती से हिरमन शिंडे और शीला देवी शिंडे। कितनी अच्छी बात है, देखो हमने एक बात की तरफ इशारा किया था और हिरमन शिंडे साहब ने सिर्फ दो ही नाम लिखकर भेजे, तीसरा वो नाम नहीं लिख के भेजा जो दूसरे ईमेल में अक्सर बेशतर आता है, हो सकता है वो आगे शामिल भी हो। बहर कैफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तामिल इशाद प्रोग्राम में, और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में एक और नगमा, फिल्म है चाचा चा, इकबाल कुरैशी की है मौसिकी, और सुनने के ख्वाहिशमंद है चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव, सागर एमपी से, और आप हैं शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, युवती देवदास, बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और महकप्रीत कौर, ये नए नाम है, गांव तंगौरी, जिला मोहाली, पंजाब से हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उर्दू सर्विस के तई जो मोहब्बतों का इजहार आपने किया है उसको बस जारी रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। और अगला ईमेल रिपीट हो गया है, इसको साइडलाइन कर देते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, और आप किशन सबका, आशा सबका, सोने विशाल सबका, शास्त्री नगर बीट शहर से, बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु है मुक्तसर पंजाब से शामिल हो गए हमारे प्रोग्राम में। और अगला ईमेल फिर रिपीट हुआ, इसको भी करना पड़ेगा रन आउट। विनोद मूरत, नेह जैन, दीपक मूरत, बोरखेड़ा उज्जैन से है, और अगला ईमेल मिला है नरेन्द्र नेताम, कुसुम निदाम का, बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से, और संजय, ये पहले ईमेल शामिल हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। राजपाल गजबी, राधिका गजबी, तन्मय गजबी छत्तीसगढ़ डोगर गांव से हैं, और बाबा साहब वडोदे आदिचर पे, चंद्र प्रभा वडोदे जरोड़ वरुण से, दिनकर सालवे, गंगा सालवे, शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से, और नंद किशोर घटी

ए अंजलि करवा बाला साहेब करवा बीड शहर महाराष्ट्र से, और हिना सावरी आयजल इमाम मोहम्मद हसन इमाम बिशनपुर गेडी झारखंड से, और ये फरमाइश ईमेल मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से मिला है। सोपान ताड़े वसंतराव भोजने और पीएस नाहवकर का, और छत्तीसगढ़ के कोका भिलाई से प्रताप पांडे, रेखा पांडे और विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, और साथ में एक नाम इसमें और भी है विविधा वंडलकर का, जो विविधा लाता है इस नामों में। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, साथ में आज हैं आस्ता अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, और लीजिए अब सुनिए ये नाम।

अब आपकी नजर करते हैं सुशीला फिल्म का नगमा। मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम का गाया हुआ सी अर्जुन की मौसीकी जानिसार अख्तर ने इस नगमे को कलमबंद किया था। और जहां तक फरमाइशों की बात है तो इसको सुनना चाहते हैं पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, आशीष गौड़, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और अगला ईमेल है पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, असमानाज अंसारी का। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं सोमदत्त, कैरा और ज्योति रानी, नाभा पटियाला पंजाब से।

तो ये हसीन नगमा भी आप सुनते रहिए और कुछ नाम भी आपके शामिल करती हैं। राजेश साबले पाटिल, अभी कुछ देर पहले मुझे लगता है कि ये हमने शामिल किया है। और अगला ईमेल गन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का है, इसी नगमे सुन रहे हैं। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी और साथ में हैं उनके कुछ और साथी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, नैना गोमर खेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गोहनकर आई, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुक्कू और शब्बीर हुसैन, शहजाल हुसैन, मुज्जू बाबा सब्जी मंडी बुलडाना से। और ये ईमेल भी कुछ रिपीटेशन का सिलसिला है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जनाब। सुभाष नगर बल्लारपुर से निधि साहू, और ये फरमाइश ईमेल मिला है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, मीनाक्षी का। और अगला ईमेल है कल्पना मदन झा मानक और मयंक का, नरोली फाटक बिलाड़ वापी गुजरात से, और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक, और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाहजहापुर एमपी से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, साथ में राशि रक्षित, उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो करिश्मा है, एक पर सोगा लातूर से, और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्य भारती, उमारा।

आज धर्मेंद्र शिवा कपिल शिवा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से शामिल हुए, मुकेश भत्ता नीलम भत्ता और वंश भत्ता हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल है दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन रंजन, साहिबा नवाज और हसन नवाज का। और आप हैं जिला बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार, अंकित कुमार और संदीप कुमार, उनके बहुत सारे साथी। और जाते जाते एक और नगमा आपकी नज़र करते हैं जनाब, बड़ा खूबसूरत नगमा है पुनर्मिलन फिल्म का, सी अर्जुन की मौसीकी में, रफी साहब की आवाज में। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी।

हिंदी और साहब पे लिखा हुआ नगमा आप सुनते रहिए और कुछ नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त तो कम है बहुत। सरदारगढ़ सूरत से शाहमदार, हनीफ शाहमदार और गफार अनु बापू। विजय महोतिया महोबिया, माफी है, कविता महोबिया और पेंटर बाबू हैं रामगंज खंडवा से। और ये फरमाइशी मेरे मिला दादा ठाकुर कुशेश्वर कांति गुप्ता का, साथ में रुद्र गुप्ता भी हैं राजनगर कांति निकेतन से। मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, ममता अरोड़ा पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। और कामेश यादव के साथ में कौन है आज, राधेश्याम यादव, शालिनी यादव सिंघार तलाई खंडवा से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और किशोर साहू, अनुसुईया साहू, निधि साहू सुभाष नगर बल्लारपुर से एक जो ईमेल हमने शामिल किया उसमें खाली एक ही नाम था, इसमें दो नाम और शामिल हो गए। और अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले। और ये फरमाइश मिली जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश

0: हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाए।
1: मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा की फरमाइश भिलाई छत्तीसगढ़ से शामिल हुई है जनाब। और वसंत कुमार सिन्हा और अहले खाना दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से जाते जाते आपकी हाजिरी भी लगी है जनाब। एम ए वहीद रुमानी, मोहम्मद फसी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर हैं फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से। बाबू भाई भारती देवी जवाहर नगर उदयपुर से शामिल हुए जनाब। और ये फरमाइशी मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन।

0: प्रदेश में 375 है, तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हैं कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है, आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे, तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है, तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा, तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है, तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उस को अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीवीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति

0: के पथ पर लगातार बढ़ते रहे इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशात आप सुन रहे हैं। पेशे खिदमत है कवालियां फनकार हैं शंकर शंभू कवाल और हमलावा।

0: का झुकाया तुमने।
1: शंकर शंभू कवाल पेश कर रहे थे चंद कवालियां, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12 बजे चाहते हैं, अब आलमी खबरें नशे की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराहों के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआई के ठिकानों पर हमले किए हैं। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्शैक ने शेसल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया और जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो आज 16वीं भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने शाहराहों के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,141.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहराह से मुतालिक है। ये शाहराह उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इक्तसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहराह 148 AE पर 6 लेन वाली एक 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है जो द्वारिका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर काबराई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है जो 4 लेन वाली एसएस कंट्रोल राहदारी होगी जिसका ढांचा इस तरह से वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके। विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ती हुई उजरतों का इतलाक कल से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रूपये योमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम न हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एमजी नरेगा के तहत 298.80 रूपये योमिया से बढ़कर 327.40 रूपये योमिया हो गई है जो कि 10%

प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामाना कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तश्वीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेजी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरूद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा कि वह अकलियती फिरकों और उनकी इबादतगाहों के तहफ्फुज, सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान में फिरकावारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने कल नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में सफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जर हिरासत शहरी कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूदा 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माहीगीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माहीगीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कल दावा किया कि उसकी अफवाज ने पाकिस्तान में आईएसआई के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वाके आईएसआई के मराकज पर किए गए। इन हमलों में आईएसआई और उसके हामियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा कि ये हमले इंतहाई दुरुस्त निशाने के साथ किए गए और इन हमलों में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई। यह कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पाकतिका और कुनार में किए गए फजाई हमलों के बाद किए गए, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरी हलाक और 163 अफराद जख्मी हो गए थे। इन हमलों के बाद अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से सूरतेहाल पर गहरी नजर रखने की अपील की है। इन फजाई हमलों पर आलमी सतह पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए तमाम फरीकों से शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की अपील की है। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों आईएनएस तरकश और आईएनएस शेख ने शेजल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरी हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी ताउन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज़्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान शेजल के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशावराना इस्तकबालिया और कम्यूनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान आईएनएस तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक़िद शेजल्स के कौमी दिन के परेड में हिस्सा लिया, जो भारत और शेजल्स के दरमियान करीबी और दरेना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ज़राअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और पाकिस्तानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सैलाब से मुतासर आसाम के धीमाजी जिले का दौरा किया और नुकसान और राहत रसानी इकदाम का जायजा लिया। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीरों ने सबसे ज्यादा मुतासर अरुण चौपारी इलाके का भी मुआयना किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मम्लकत डॉ जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम तकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम का ये भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ आज 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये छोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा ताउन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात का

0: सख्त मजम्मत की है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों आईएनएस तरकश और आईएनएस इश्काक ने शेजल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया और जापान की वजीर आजम सनाई ताकायची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो आज 16वीं भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
3: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकायची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स से सतर्क रहें। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। यात्रा के 1:10 हुए हैं। सुनते हैं गीत, सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ यानी मेरे साथ। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

बताओ, अभी आपने गीत सुना फिल्म महबूब की मेहंदी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए सुनते हैं फिल्म मेरे सनम से एक और प्यारा सा गीत आशा भोसले की आवाज में।

जाइए आप कहाँ जाएंगे मेरे सनम फिल्म से आपने सुना इस गीत को आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे हैं गीत सवेरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है।

जो भी है बस यही एक पल है। जी हाँ दोस्तों, जो समय है, जो वर्तमान का समय है, उसको दिल से जीना चाहिए, अपनी परिश्रमदत्त से जीना चाहिए, अपने पूरे एफर्ट्स प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, अपनी जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए, हालात में अच्छाई के लिए, औरों की भलाई के लिए, किसी के सुख दुख के लिए जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए। किसी के लिए कुछ ना कुछ तो हर इंसान को करना चाहिए, अपने लिए भी, अपने ख्यालों के लिए भी, किसी के सपनों के लिए भी अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम। वक्त 1:33 हो गया है। सुनहरे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में, शब्द बाजार के हैं और संगीत मदन मोहन का। यह फिल्म 1975 में आई थी। सुनते हैं इस फिल्म का गीत, दिल ढूंढता है।

श्रोताओं, अब सुनते हैं आप तो ऐसे ना थे फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में एक रोमांटिक सॉन्ग तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाऊं तो लगता है तेरी महफिल है।

श्रोताओं कार्यक्रम में थोड़े से व्यवधान का हमें खेद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

क्या है गम, मरता हूँ तुझे ही अपनी कसम। तू मेरी जल परी, दुनिया जल तुझे।

बताओ गीत सुनहरे कार्यक्रम में ये कार्यक्रम का आखिरी गीत इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी विदा। अगली मुलाकात तक अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए, भूले नहीं अपने दोस्त मोहन को याद रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: Hey Akash, Rani दिल्ली का AIR Live News 24x7 चैनल में रात्रि के 2 बजने को है श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी प्वाइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूर दराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 0-0 से

आकाशवाणी दिल्ली का NIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 2:10 हुए हैं। ये वक्त है गीत बहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, यानी एक साथ लगातार फिल्मी गाने। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को है, कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148A के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि यह यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारी सी गजल जगजीत सिंह के मधुर आवाज में।

अजय सिंह और चिता सिंह की आवाज में ये मधुर गजल अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उदास साहब की आवाज में।

पंकज उदास साहब की आवाज में अभी ये मधुर सी गजल आपने सुनी। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज में उनकी एक और गजल।

ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत मशहूर गायक हंसराज हंस की आवाज में।

मिश्रा झंस की आवाज में अभी ये मधुर संगीत सुना आप लोगों ने भी, और ये सुनते हैं भक्ति सिंह की आवाज में ये अगली गजल।

0: मधुर गजल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से आवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, आवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है कि आवाज कहां से आ रही है, इंकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है कि किसकी सुन रहा है।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत और गजलों के कार्यक्रम के इस अंत में हम सुनते हैं अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाथ ब्रह्म।

ಮಾಯ್ ಮತ ಮತ ಬಲಿತ ತನಿದೈ

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:53 और 58 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार। उसके बाद 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग अश्वथासन और तितली क्रिया। पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी समाचार। 6:10 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर आप रामचरितमानस बालकांड का भाग 104 सुन सकते हैं। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचारों का कार्यक्रम समाचार प्रभात। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5 बजने वाले हैं और 5 बजे का समय होगा हिंदी समाचारों का। उसके बाद 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आइए सुनते हैं अंग्रेजी समाचार।
1: ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇ ਸਾਸ ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

रावण का स्वर्ग का सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा दी साहिब तहां तहां रखिया रे आयतन।

जन पंथ की जीत श्री साहिब जी समाए खालस जी के बाण बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानु सिक्की दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दैन दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंदे जुगा

Bye.

कान कृष्ण जादू भया पार जात गोपी ने आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ ना खुदाई अलह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे पटानी अमल किया सचार गुण तीन चार विचार

0: शीश नवाया क्या त्रिय सुदे जाए महला पहला
1: संध्या वादन सिल पुज सबोल समाधन मुख झूठ विभूखण सारन कृपाल तिहाल विचारन गल माला तिल लाट मिल धोती बस पाटन जे जान सुब्रह्म कर्म सपोक्त।

सूजत गंढी सत बट जने जीता है ता पंड कत नाह जनम लगना है जलन जाए तन समान सुनान का जो गलत ले पाए चौकड़ मन आया बे चौकड़।

0: पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मनाया होवे प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैधा जाए सी तां दरगह पैधा जाए सी
1: तुम्हारे तेरा सब सब दे पाए राम राजे चाहत से